0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਨੋਜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पान गांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इस

0: के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

0: और मृदाएं।
1: ठीक।
0: सो इस करके छोलियां दी फसल लई जमीन नूं बहुत भुरभुरी करन दी लोड़ नहीं, ते पर डूंगा जरूर बाउणा है।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, ये ध्यान आपां ने रखना है। पोलियां ते डूंगियां वाहियां जमीना च छोलियां नूं उखेड़ा रोग रिंगा सिंह जी घट लगता है,
1: ठीक।
0: ते जमीन दी ना कोई 1.5 सेंटीमीटर डूंगी वाही नाल वध झाड़ आपां लै सकते हैं।
1: जी
0: ते बाकी बच्चों वाले गल ये आ जाती है कि देसी छोलियां लई 15 तो 18 किलो, ये आपां PVG 5 किस्म छट के,
1: जी
0: ते काबली छोलियां लई रंगा सिंह जी 37 किलो बीज फी एकड़ दे हिसाब आपां वरतना है।
1: ठीक।
0: जिहड़ी आपां किस्म छड्डी है PVG 5, उहदे लई 24 किलो बीज ये आपां ने फी एकड़ दे हिसाब लैणा है।
1: सतबचन जी।
0: एक रंगा सिंह जी खास नुकता ये आ जाता है कि जो आपां झाड़ वधाउण दी गल करते हाँ, एक एकड़ दे बीज नूं ना घट्टो घट पानी नाल गिला करके इनू आपां साफ फर्श दे उत्ते बिछाउणा है,
1: जी
0: ते इहदे च फिर जिहड़ा है टीका आपां ने मिलाउणा बच्चे वाले, जीवाणु खाद दे एक एक पैकेट नूं मिला के ना बीज नूं चंगी तरह रला लो, ते इनू छावें सुका के 1 घंटे दे अंदर अंदर बीजना है, ये ध्यान आपां ने रखना है।
1: मतलब 6 में सुखा के सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही बीज है।
0: हाँ, ते छोलियां दी फसल नूं पूरे दे नाल बीज लो, सियाड़ तो सियाड़ का फासला रंगा सिंह जी 30 सेंटीमीटर रखना है, बीज नूं कोई 10 तो लैके 12.5 सेंटीमीटर डूंगा बीजना है।
1: जी
0: इस तरह बीजण नाल फसल नूं उखेड़े दी बीमारी घट लगती है। ते रंगा सिंह जी दरमियानियां ते भारियां जमीनां च ना छोलियां दी बिजाई ये जिहड़े कणक लई वरते जांदे बैड प्लांटर नाल उहदे नाल भी आपां कर सकते हां,
1: जी
0: ते बीज खाद दी मात्रा जिहड़ी है वो भी ध्यान आपां ने रखनी है कि सिफारिश कीती मात्रा जिहड़ी है आपां पाउणी है।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, देखो सेंजू हालतां दे विच जे नाइट्रोजन तत् की गल करिए ना बच्चे वाले, ये 6 किलो चाहिए फी एकड़,
1: जी
0: फास्फोरस जिहड़ा है 16 किलो चाहिए है, तो इस तरह जे आपां यूरिए की गल करिए कोई आपां 13 किलो चाहिए है
1: ठीक।
0: काबली छोलियां लई, ते सुपर जिहड़ा है ये 100 किलो फी एकड़ के हिसाब आपां पाउणा है, काबली छोलियां की लोड़ है, ते देसी छोलियां की जिहड़ी लोड़ है उस नाइट्रोजन 6 किलो, फास्फोरस 8 किलो, घट जानी है फास्फोरस अद्धी हो जानी है,
1: जी
0: सेंजू हालतों के आपां जिहड़ी पाउने ना देसी छोलियां दे विच वो 16 है,
1: अच्छा
0: तो इस तरह सिंगल सुपर फास्फेट है जिहड़ी ये 50 किलो फी एकड़ के हिसाब देसी छोलियां देनी है, बिजाई समय सारी खाद जिहड़ी आपां ड्रिल दे नाल पूरनी है रंगा सिंह जी।
1: सारी दी सारी। ठीक जी।
0: हाँ, ते बाकी बच्चों वाले ये है कि वधेरे झाड़ लैण दे वास्ते फसल बीजण तो कोई 90 तो लैके 110 दिनों के अंदर 2% यूरिया है ना, कहण दा भाव कि 3 किलो यूरिया 150 लीटर पानी च पा के छिड़काव कर देना,
1: ठीक है जी।
0: इहदे नाल तुहानूं झाड़ चंगा
1: मिल
0: मिलेगा।
1: सकदा।
0: बाकी रंगा सिंह जी देखो, नदीन तां हर फसल की समस्या है, नदीना की रोकथाम लई ना 1 तो 2 गोडियां ये
1: अच्छा
0: आपां ने करनियां है, ते पहली कोई 30 ते दूजी 60 दिनों के बाद,
1: ठीक।
0: ये पहिए वाली जिहड़ी सुधरी हुई तरफाली है ना उहदे नाल जे गोडी आपां करिए उह सानूं सस्ती पैंदी है।
1: ठीक।
0: हाँ, सेंजू जमीन च रंगा सिंह जी बिजाई तो पहला भरमी राउणी करनी बड़ी जरूरी है, ये ध्यान रखना आपां ने।
1: समझ गया।
0: हाँ, इस तरह नाल जड़ां डूंगियां जाणगियां ते भूमि विचले पानी की योग वरतों होएगी, ते फसल नूं बाद दे विच लोड़ दे मुताबक केवल 1 पानी की लोड़ है रंगा सिंह जी,
1: अच्छा बस
0: ये फसलां इदां दी हुंदियां ने।
1: घट पानी मांग।
0: हाँ, ये पानी बिजाई दे समय जिहड़ा बारिश दे अनुसार देना है, अगे मुड़ के मीह भी पै गए ते
1: उदों तो बाद तुसीं पानी दे दो एवीं नुकसान कर बैठे,
0: कंड हो जाना है। सो इस करके बहुता पानी देण नाल बूटे का फुलाट जिहड़ा वध जांदा ते फल घट लगता है।
1: जी
0: भारियां जमीनां खास करके झोने के पिछों बीजे छोलियां नूं पानी बिल्कुल नहीं लाउणा,
1: अच्छा
0: ते झोने वाले खेतों च जेकर पानी ला के देखिए तां सारी दी सारी फसल ही तबाह हो जाती है।
1: ओहो,
0: डड्डे बण वेले पानी की घाट नूं पूरा करन लई झोने पिछों वट्टां उत्ते बीजे छोलियां नूं पानी लाया जा सकता है।
1: ठीक।
0: सो रंगा सिंह जी, ये बरीकी दियां गल्लां है, बाकी स्यौंक भी पैंदी है, छोलियां की सुंडी भी पैंदी है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान इन्हां दा करदे है, ते इस करके जिदा सुंडी की आपां गल करदे हाँ ना, इहदे लई वख-वख दवाइयां है माहरां वल्लों सिफारिश कीतियां, कुराजन है साढ़े कोल।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

शाम 4:30 बजे श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 बजे सरवण करो गुरबाणी विचार प्रोग्राम।

0: मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयः अद्यारभ्य गुजरात राज्ये द्विदिवसीयस्य चिन्तन शिविरस्य आयोजनं करिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रस्य राज्यानां कार्यान्वयन अभिकरणानां च वरिष्ठ प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां विकासस्य वितरणस्य च विषये प्रमुखविषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। कार्मिक लोक अभियोग निवृत्ति वेतन मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह अद्य नवदिल्ल्यां सप्तदशतमे निवृत्ति वेतन न्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति। कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन मंत्रालयः सूचितवान् यत् अतिवरिष्ठ निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां परिवार निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलंबितानां सप्तनवत्यधिक 800 यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति। फुटबॉल क्रीडायां गत विजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स दलेन पंजाब एफसी इत्येतं दलं पेनाल्टी द्वारा 43 अंकैः पराजित्य अंतिमस्पर्धायां स्वस्थानं रक्षितम्।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रिया।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। सरकार ने कहा कि हालिया सालां च भारत दी आर्थिक मजबूती दा मुख कारण वित्तीय खेत्र विच कीते गए सुधार रहे ने। भारत ने कैनेडा दरम्यान आज ओटावा तजवीजशुदा व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते बारे में 5वें गेड़ दी गलबात शुरू होवेगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई परमेलिन भारत के 3 दिन अधिकारित दौरे से आज नवी दिल्ली पहुंच रहे ने। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सप्लाई चेन की मजबूती और संपर्क उभरदियां दरम्याने दर्जे दियां ताकतां लई मुख एजेंडा ने।

उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन ने कहा कि सही मायने च विकसित भारत नूं अपने नागरिकां ते परिवारिक कदरां कीमतां ते भरोसा रखना चाहिए है। अमले लोक शिकायतां ते पेंशन बारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अज नवीं दिल्ली 17वीं पेंशन अदालत की प्रधानगी करनगे। अमृतसर देहाती पुलिस ने एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार करके गैर कानूनी हथियारों ते धमाका के सप्लाई नैटवर्क नूं तबाह कर दिता है। हवाई फौज ने भारतीय हवाई फौज के एक एक परमवीर चक्र जेतू फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की याद में चंडीगढ़ समेत देश के कई शहरों सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन करवाई। अमृतसर च अज तो 9 अक्तूबर तक श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित विशेष ड्रोन शो करवाए जा रहे हैं। 226 दी एशियाई खेडा जापान ते नागोआ च अधिकारित तौर ते खत्म हो गई ने। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ।

पर रब पुछेगा ना जदों किन्ने लोकां दा दिल दुखाया, किन्नियां दे चेहरे ते मुस्कुराहट लियाया, ते फिर की जवाब दोगे? क्यों? क्योंकि गिव एंड टेक दा समा हमेशा ही रहिंदा है। कहिंदे ने जो दवांगे उही मिलेगा। सो सोच के देख लियो तुसी देण तों पहलां कि दूजे नूं की दे रहे हो, है ना? उही मुड़ के आना है। तो जे चंगा चंगा चाहुंदे हो तो चंगा चंगा सब नूं दिओ। बाकी दीआं गल्लां बातां आपां तुहाडे नाल करनियां ही ने। पर इस वेले जिहड़ा गाना है ना, वह भी बहुत कुछ कहिंदा है, बहुत कुछ। हाँ, बहुत कुछ कहिंदा है। तुसी कदी सुनिया नहीं? लो फिर सुनो अज दा ए प्यारा जिहा गीत।

ला जी, ये गीत ने थानू सब कुछ नहीं बहुत कुछ याद करवा दिता है कि जिंदगी सफ़र किन्ना सुहाना है। सुहाने सफ़र दे विच कदी कदी हनेरी तूफान आ जाते ने, पर तुसी अपने आप नू संभाल के अगे लंघ जाना है, क्योंकि जिंदगी चलण दा नाम है। तो मैं भी चलते चलते उस जगह पर पहुँच गई हाँ जिते जिहड़े दो हफ्तियां दी गल कीती सी ना, उहदे विच नैशनल वाइल्ड लाइफ वीक ये दिहाड़ा भी मनाया जा रहा है। तो 2 तो लैके 8 अक्तूबर तक, तो इस वर्ष का जिहड़ा थीम रख्या गया है वह वन जीव संरक्षण लई साझेदारी। सानू लगता है कि आपां सिर्फ अपना घर बना लिए, अपनी कोठी बना लिए, अपने बंगले बना लिए, अपने वड़ियां वड़ियां बिल्डिंगां बना लिए, सोहने बगीचे सजा लिए, पर धरती सिर्फ साड़ी नहीं है, साडे जीवन नाल जुड़े हुए जीवन चक्कर की पूरी कहानी है। जंगल है, जंगल दे विच रहण वाले जीव जंतु ने, बाकी तुसी आप सियाणे हो, धरती सब दी है। इस सोच के ध्यान रखियो, जंगल कट्टण तो पहला, जंगलों में गंदगी पाउण तो पहला, जंगल दी उनू अगन पेंट करन तो पहला, बहुत सारिया गल्लां दा ख्याल रखना। घर दे विच चूहे आ जांदे ने, असीं बड़े परेशान हो जांदे भी चूहा कपड़ा टुक गया, चूहा इंज कर गया, चूहा इदां कर गया, बिल्ली आई सी इंज कर गई। एक घरेलू पशु पंछी ने, है ना। तो जिहड़े जंगली जीव ने, जे उन्हां दे आपां घर मुका देवांगे तो वह कित्थे जाणगे, फिर शहरां वल नूं आउणगे ना। सो ये सारिया चीज़ों का खास ख्याल रखना है। शिकार की जिहड़ी मनाही है वह नहीं करनी, है ना, क्योंकि तुसीं बाकी सारे सियाणे हो। सोहनी सवेर प्रोग्राम तुहानूं इन्ने सालों तो सुना रहा, बहुत कुछ सिखा रहा, तो तुहाडे कोल भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ। हाँ, तुसीं सारे मैनूं लगता है समझदार हो गए हो। जिथे भी लोड़ खड़ी हुंदी है उत्थे तुसीं सुरक्षा कवच बन के प्रकृति नूं बचाउण लई खड़े हो जाने हो। सौण दी रुत्त दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा रुख लाउने हो। उस तों इलावा जिथे रुख की केयर करन दी लोड़ होवे उत्थे संभाल भी करदे हो। भावें असीं घरां दे कोठियां ते अपने किचन गार्डन बना ले ने, पर उन्हां दी जड़ां देखो ना, पर वड्डे वड्डे रुख मैनूं लगदा है इंज कि गमलिआं च नहीं लाउणे चाहीदे। क्यों? क्योंकि तुसीं इंसान हो, जे तुहानूं कोई गमले च बन्न दे ते क्या थानू किवें दा लगेगा, क्योंकि रुख जड़ा है उहदियां जड़ां बहुत मजबूत हुंदियां ने, बहुत वड्डियां हुंदियां ने, उहदा आकार भी वड्डा होना हुंदा है, पर असीं उहनूं छोटे जे गमले च पा के उहदी ग्रोथ नूं रोक दिंदे आ। ते साडी ग्रोथ फिर किवें होऊगी, इहदे बारे थोड़ी जी झात पा लैणा। वड्डे रुखां नूं हमेशा धरती दे विच लाउण दी खेचल करिओ। धरती बचाउणी है, जमीन बचाउणा है, ते रुखां नूं धरती ते लाउणा है। ये थोड़ी ते साडी सारियां दी जिम्मेवारी बनती है। सो इस वेले मेरी जिम्मेदारी एक होर काम की भी बनती है। तुसीं कहना जिम्मेवारी तो तुहाडी है, क्योंकि प्रोग्राम तुसीं कर रहे हो, तुहानूं ही पता है ना भी की करना है। हाँ जी बिल्कुल, मैनू पता है, जन सेवा से लोक सेवा, जन सेवा तो देश सेवा। इस लड़ी तहत जिहड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों के सुशासन, यानी 2014 तो लैके 2026 तक डिजिटल क्रांति ते ट्रांसपेरेंसी का जिहड़ा युग शुरू होया है, उन्हें साडे जीवन नूं बड़ा सौखा कर दिता है। सब तो पहला जे असी बैंक की गल करिए, बैंक हाँ पहले जाना पैंदा सी, सारयां दे खाते भी नहीं बनते सन, है ना, बहुत कुछ हुंदा सी। ते बस फिर हुण देखो, हुण दा समा की कहिंदा भला, बस मोबाइल फोन ते है सारा कुछ, अपडेट करो नाल ही खाते बैंक विच आ जांदे, मतलब बैंक तुहाडा मोबाइल विच आ गया। बहुत सारिया चीज़ों का इस दौरान भी खास तौर पर ख्याल रखना है कि क्लिक करन तो पहला थोड़ा जिहा सतर्क होना है, लोड़ तो वध मतलब जानकारी किसी नाल सांझी नहीं करनी, है ना। तो ये गल्लां दा तुहानू सारयां नू पता है, पर ऑनलाइन जनतक सेवावां दी गल करिए ते कतार तो क्लिक तक जिहड़ा उमंग ऐप है, डिजी लॉकर है, ई डिस्ट्रिक्ट वर्गियां सेवावां भी ये शुरू होया कितनी देर हो गई है। इहदे नाल सौखी हो गई, सानू अपना ड्राइविंग लाइसेंस का अपडेट कराउणा होवे, पासपोर्ट नाल कोई बनवाउणा होवे या अपडेट कराउणा होवे, सर्टिफिकेटां नू ऑनलाइन प्राप्त करना होवे, ते बस फिर सौखियां ही क्लिक ते पा सकदे आ, ओह भी किसी एक्सट्रा पेमेंट दित्तियां होया, है ना। इस तों इलावा वड्डियां जिहड़ियां योजनावां ने उन्हां दा भी रियल टाइम निगरानी करन दा सौखा तरीका बन गया है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली

0: ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट में विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
2: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
3: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। दो नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी

0: प्रभारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: जालिम लोशन दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
2: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
3: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
2: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजक जोरमसांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कुरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
4: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ अच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
5: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में

0: 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
2: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है। भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है। गुजरात के महसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी

0: जाके हम भी आ जाते जाते तू भी सुन जा
1: सुन जा ठंडी हवा
0: आ थम जा ऐ काली घटा।

0: समझा
1: समझा हाथ हमने हवा
0: हाथ समझा ऐ काले घटा।
2: तो जी प्यारे जी गीत तुसे सुन रहे हो केड़ी फिल्म का है हाथी मेरे साथी फिल्म का, क्योंकि आज दे इस प्रोग्राम च एक ही फिल्म दे गीत दे विच हाथी मेरा साथी फिल्म दे गाने से थानू सुना रहे हैं। वैसे जो गीत गा रहे ने ठंडी हवा समझा कि सचमुच हवा नहीं सुन रही है तुसे कि नहीं, बोल के तो देखे नहीं कि ये सुन रही है कि नहीं, या चेक तो किया नहीं, वैसे सचमुच हवा में बोल रही है। हाँ उन्होंने जो तिरंगा ने ना यही तिरंगा के जरिए तो साड़ी आवाज थोड़ी तक पहुंच रही है। सो आज दे इस प्रोग्राम जी फिल्म है ना हाथी मेरे साथी ए आई सी 1971 दे विच सिनेमा जगत की इतिहासिक ते परिवारक ड्रामा फिल्म अपने बोले की सब तो वड्डी ब्लॉकबस्टर फिल्म दिग्गज लेखक जोड़ी सलीम जावेद की पहली अधिकारित स्टोरी ते कलाकारां दी गल करिए ते इस फिल्म च राजेश खन्ना राजू दे रूप च ते तनुजा तनु दे रूप च मुख कलाकार सन। निर्देशक ए एम ए तरु मुगम ते कहानी ते निर्माता दक्षण भारतीय फिल्म निर्माता सैंडो एम एम ए चिन्नप्पा देवर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारी लाल ते सदाबहार गीत आनंद बख्शी दी रचना दी ए शाहकार रचना बन गई। ते फिर हाँ गाने सुनाने ने इसे फिल्म दे ते फिर इसे फिल्म का एक होर गाना जिहड़ा इस कहानी नू लीड करता है

सी नाजुक है जो मोटर में बैठी है जो फूलों सी नाजुक है जो मोटर में बैठी है जो आहिस्ता आहिस्ता चल।

जो गाने सुन के थोड़ी याद आ गया इस फिल्म च कि हाथियों की कहानी है ना, राजेश खन्ना दे राजू दा इन्हां नाल बहुत प्यार, क्योंकि उन्होंने तो तेंदुए तो राजू की जान बचाई सी। तो फिर जिवें जिवें वड्डा राजू हो गया तिवें तिवें तो प्यार होर वड्डा गया, तो प्यार दे विच जदों फैमिली का प्यार आ गया तो फिर किवें विच मुश्किलां खड़ियां हो गई। ये कहानी तुसीं सुनी होनी है, पढ़ी होनी है, पढ़ी तो नहीं खैर देखी जरूर होनी है, तो कईयों ने फिल्म बार बार देखी होनी है। जो तुसीं नहीं ना फिल्म देखी तो यह फिल्म

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिहे कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
0: लो जी, खास सुनेहा तो बार प्रोग्राम गाता रहे मेरे दिल च तुहाडा स्वागत है। आज दे इस प्रोग्राम च हाथी मेरे साथी फिल्म दे गीत तुहानू सुनवाए जा रहे ने। सो अगला गीत जिहड़ा सुनवाना है उस तो पहला एक रोचक जी कहानी तुहाडे नाल सांझी करदे आ। तुहानू पता ही है जिवें कि इह हाथियों दे नाल राजेश खन्ना ते तनुजा दी बहुत अच्छी फिल्म रही। ते जदों एंड वाला सीन आउंदा ना, यानी क्लाइमैक्स, ते उह इक शॉट सीगा जिहदे च हाथी ने तनुजा नूं धक्का मारना सी। फिर हाँ, हाथी ने तनुजा नूं धक्का मारना सी, पर जदों सीन शूट करन लगे ना उदों हाथी ने तनुजा नूं धक्का मारन तों ना कर दित्ती, क्योंकि हाथी उस नाल इन्ना हिलजुल गया सी कि उहनूं पसंद करदा सी ते उहदे नाल कंफर्टेबल फील करदा सी। ते फिर हाथी दे इनकार तों बाद पता की होया, फिर दोनों का अलग अलग सीन शूट होया। मेकर्स ने हार मन के पक पक क्लोजअप शॉट शूट किए ते फिर एडिटिंग करके फिल्म के क्लाइमैक्स सीन नूं इस ढंग नाल जोड़िया। सो कहने तो भाव यह है कि जे असीं जानवरां नाल प्यार करते हैं ना तो प्यार की भाषा वह भी समझते हैं, पशु पंछी भी समझते हैं। तो कभी कभी असीं इंसान होने के नाते दूजिआं नूं प्यार दीआं भावनावां नूं क्यों नहीं समझ पाते, यह थोड़ा जिहा अज तुसीं झात पा लेना। पर इस वेले हां गल्लां नहीं गाणियां दा वेला है। तो फिर सुनते हैं इस फिल्म का गाना लता ते किशोर दीआं आवाज़ां 'च

पता है कि बाकी सारे की तो पसंदीदा फिल्म रही, पर मशहूर हॉलीवुड की जिहड़ी अभिनेत्री लूसी लियू है ना, उहदी भी बचपन में सब तो फेवरेट फिल्म रही। तो यह गल उन्हें एक इंटरव्यू सांझी की थी कि मैं बचपन में इस फिल्म की दीवानी सी, ते चल चल मेरा हाथी मैं गाना गुनगुनाया करती सी, गाया करती सी। हाँ सचमुच बच्चे भोले होंगे ने, असी भी भोले होंगे, रब ने भोले बना के भेजे, पर असी अपने फायदे ते नुकसान दे चक्कर दे विच दुनिया की परवाह करनी छड़ दिंदे आ। नफरत की दुनिया को छोड़ के ऐसा कुछ कहना है मोहम्मद रफी और दी आवाज। आपां ही गाना तो सुन सकते हैं पर समा पड़ा थोड़ा जहा, तो गाने अपने को बहुत सारे ने। तो चलो फिर आप इस फिल्म के चलते चलते गाना सुन लें।

हाथ जोड़ सबको सलाम कर जा रे। दुनिया में रहना है तो काम कर जा रे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर जा रे, वरना ये दुनिया

से बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती।

0: एक भी नियमित रोजगार नहीं है।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। बेला है प्रोग्राम शास्त्री संगीत दे सुर साधना का। अज दे इस प्रोग्राम च वीणा सहस्रबुद्धे का गाया राग कोमल ऋषभ असवारी पेश कर रहे हैं।

0: लो जी, इस वेले आकाशवाणी जलंधर ते चल रहा प्रोग्राम हैलो फरमाइश। तुसी भी अपनी पसंद का गीत सुन सकते हो 0181 4143 नंबर डायल करन तो बाद। ते बाकी दी फोन कॉल कौन कित्थों कॉल करेगा, किहड़ा फरमाइश ही गीत होएगा, वो आपां जाणांगे जरूर। पर इस वेले घड़ी दीआं सुईआं दा इशारा है, ब्रेक ते जाण दा वेला है।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखें।

0: ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा पर राष्ट्रपति पामला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं।

0: पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। आज नई दिल्ली में जर्मनी के नेताओं के साथ बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत रुक गई है। उन्होंने कहा कि विचाराधीन समझौता एक कठिन और गहन बातचीत के बाद तैयार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को सत्य, करुणा, मानवता और सद्भाव का संदेश दिया। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरी मेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz, FM 103.6 MHz, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साड़ी प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप दे जरिए भी सुन सकते हो, नाल दे नाल वेव्स ऐप राही भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी लेके हाजिर तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वालों प्यार परी मुस्कुराहट परी नमस्कार अदाब ते सत श्री अकाल।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी। धमक जलंधर पैंदी च बिना किसी देरी तो तुहाडे फरमाइशां करन जा रही पूरियां और तुसी भी इंतजार च होवोगे। सारे बैठ गए अपने अपने रेडियो सैट के कोल भी सारे नालों पहला बाजी किन्ने मारी। लो फिर सुन लो, मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर, राजेंद्र कौर, इंजीनियर अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर हठूर, इन्हां लई ताड़ियां। लो जी दूसरा साढ़े को सुनेहा जड़ा पहुंचा है तपा मंडी तो शमशेर सिंह हांस, सतपाल मान, चनवीर सिंह, तहे दिल तो शुक्रिया। और वीपीओ मिड्डू खेड़ा डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब तो कृष्ण कुमार, राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया है कृष्णा पाक दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा ने, पिंड शाहपुर मेहतपुर तो बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, पाहुजोत सिंह, अनाहत कौर, लवप्रीत कौर, परविंदर कौर, हरप्रीत कौर ते नाल गगनदीप सिंह। अगले सुनेहे नाल साढ़े कोल पहुंचे ने सुभाष शर्मा, सुदेश शर्मा, निशांत, अनुराधा, निवान शर्मा ते निया शर्मा। ये पहुंचे कित्थों ने? ऊना हिमाचल प्रदेश तों।

और अगले सुनेहे दे नाल पंचकुला सेक्टर 9 तो आशु चुग अश्विनी चुग गोविंद टोनी दीवान लव दीवान राधे भाविक ढींगरा ते पंचकुला सेक्टर 11 तो अतुल शर्मा पिंड वड़िंगखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू भूरा सिंह गहलोत वकील सिंह चहल पिंड संतपुरा राजस्थान तो टेक सिंह सिद्धू पिंड लैपो गैरी तो गुरमीत सिंह पिंड बजीतपुर भूमा तो बलजीत सिंह किन्ने अदब नाल इन्हां ने सुनेहा भेजिया पूरा साफ सुथरे ढंग नाल भी सारे नूं पता लग जाए किहड़े पिंड तो ने ते किन्ना ने सानूं सुनेहा भेजिया बहुत खूब। अगले सुनेहे नाल पहुंचे ने जी मक्खू तो बिल्ला बजाज हैपी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज पिंड रामा जिला मोगा तो दविंदर पाल शर्मा गुरदीप राणी साहिल शर्मा वीर चंद उर्मिला देवी और अगला सुनेहा प्रोग्राम च लाओ जी खुशबू फैला रहे ने नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका वाले रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा डॉक्टर मदन लाल वर्मा हमेशा दी तरह समय नाल और बहुत ही खूब तुहाडा भी सुनेहा बहुत ही पढ़ के मजा आंदा जी शुक्रिया। अगले सुनेहे दे नाल पहुंचे ने पिंड बनवाला हनुमंता फाजिलका तो विनोद मायल सीमा लक्षिता यसिका माता विद्या देवी ते सारा ही मायल परिवार और श्री फतेहगढ़ साहब तो रामनाथ अतापुर सुखमनजीत सिंह सहजप्रीत कौर शुक्रिया जी बहुत बहुत। और अगला सुनेहा पिंड नथाणा बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता इन्होंने भेजे और प्यार परी सत श्री अकाल भेज रहे ने जी जगदीश मठाड़ू वीरपाल गुरबख्श मठाड़ू मोगा तो इन्होंने सानू सुनेहा भेजा जी वरिंदर शर्मा कमलेश शर्मा दीक्षा शर्मा रॉबिन और व्यांश शर्मा ये धर्मकोट मोगा तो इन्होंने अपना सुनेहा भेजा सानू और अमरीक सिंह टेलर मास्टर जनान जिला संगरूर तो अपने होर साथी मैंबर दे नाल पहुंचे ने मनप्रीत सिंह बलजिंदर सिंह ते परमजीत पुरवा थोड़े सारयां दी रली मिली पसंद हरजीत हरमन दी आवाज़ च गीत सुनन दी है ते लो फिर सुन लो

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।

गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मुहम्मद उमर डावर भाटापारा छत्तीसगढ़ तो, ते नाल सोहन जोशी जी। और अगले स्नेह दे नाल हाजरी साढ़े प्रोग्राम चलवा रहे ने जी, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला तो रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। अगला सुनेहा जी विजय तंवर ते ममता दा मुंडी खरड़ तो साढ़े तक पहुंचे है। पिंड ते डाकखाना खुईयां सरवर तो साढ़े कोल तहसील अबोहर जिला फाजिलका तो रमेश बिल्ला चावला, राइजल हेजल विहान चावला, आस्था जयश्री संतोष चावला, हेमंत दीपक रमेश चावला, रिजू बब्बू विहू चावला ते सारा ही चावला परिवार अपने सुनेहे नाल साढ़े कोल हाजिर है। सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया है जगसीर सिंह ते शरण कौर ने, ये जगतपुर जट्टा तो इन्होंने सानू सुनेहा भेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा भी। वडिंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टोमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा दा भी साढ़े कोल सुनेहा पहुंच गया। कृष्ण लाल, राजू, दीपू, शीतल, शारदा, विवान, गोपाल ए पिंड मक्खनपुर बिशनाह तो जम्मू कश्मीर तो इन्होंने सानू सुनेहा भेजा जी, क्या ही बातें ने। और अगला सुनेहा रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते सारा ही डागला परिवार। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा भी साढ़े को सुनेहे नाल पहुंच गए ने जी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश तो मुहम्मद फरमान, मुहम्मद सलमान, मुहम्मद इरफान, मुहम्मद इसरार, नरगिस खातून, करणवीर हाउस पुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब तो प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन ते अभिजोत। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलोनी सनावत तो मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ ते मोहम्मद शादाब खत्री। इन्हां सारयां दी रली मिली पसंद है जी सुरिंदर कौर दी आवाज गीत सुनन दी, ते लो फिर अखां दे उत्ते गीत सुन लो जी, बड़ा ही सोहना गीत है।

समा देखो किन्नी छेती छेती बीतता चलिया जा रहा है। कोई गल नहीं जी, असी भी नाम जिन्ने हो सकते ने उन्ने ही पढ़ के जावांगे। अगला सुनेहा साडे कोल धमक जलंधर पेंदी प्रोग्राम च पहुंचाया गया है, शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो, संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे दा, और कुड़ी सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी ते बेबी बॉय हिमाक्ष दा सुनेहा मिलिया। और बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा, इन्हां दा सुनेहा आया जी पिंड नंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो। और शिवाजी चौंक कटनी तो अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू रजन, रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यस सोम्या और इन्हां दे मम्मी पापा सारिया ने ही सानू मिल के सुनेहा भेजा जी। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। गोवर्धन बिहारी कलोनी दिल्ली तो वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ तो, राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना। अगला सुनेहा सतनाम सिंह गिल पिंड पक्की खुर्द और डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट तो इन्होंने सुनेहा भेजा है। मारहरा दरवाजा एटा तो नब्बी हसन अबासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन तो, जुबैर अली खान, सुबीहा सबीहा अंजुमन खान, इन्होंने सानू सुनेहा भेजा जी, तहे दिल तो शुक्रिया। अर्शदीप सुरजीत सिंह अमरकोट तो इन्होंने सुनेहा भेजा है। अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू ते रजनी का भी सुनेहा मिल गया है। और सतीश नेजा, बिमला नेजा, शेफाली, शेफी, मास्टर डेविस चंडीगढ़ तो इन्होंने सुनेहा भेजा जी। पिंड खाने की ढाब मलोट तो शमशेर सिंह कौलधर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर सिंह, तरनवीर सिंह के नाल मनताज ने भी सानू सुनेहा भेजा जी। और अगला सुनेहा डाबकी रोड अकोला तो सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदूरकर, पिंड हीरा वाली फाजिलका तो सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गोदारा। लो फिर तुहाडे सारयां दी रली मिली पसंद करन जा रही हां पूरी रंजीत बाबा दी आवाज च, तुसी गीत सुनन दी साडे कोल फरमाइश भेजी है ते करन जा रहे हां जी पूरी। लो फिर रंजीत बाबा दी आवाज च प्रोग्राम दा आखरी गीत, और इस गीत दे नाल मैनू यानी दीपाली नूं धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम इत्थे खत्म करन दी इजाजत दिओ। तुसी किते नहीं जाना, 4:30 बजे तक आकाशवाणी दे वक्खो-वक्ख सिलसिलियां नाल जुड़े रहना है।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामलां ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पामलां के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पामलां को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: राष्ट्रपति पामलां ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तीन दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पामलां के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।

0: to operate from, both sides would do it.
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में बंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारिकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। अगले दो दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ती विड़े।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बुड्ढे अते जवान सौ गल्ला दी एक गला सही
1: सिर्फ पैसे भेजन ले क्यू आर कोड स्कैन करीदा है जा पिन पाईदा है पैसे मिलन ले नहीं
2: आरबीआई कहंदा है क्यू आर कोड स्कैन करदे समय जा पिन पौंदे समय थोड़ा ध्यान नाल
3: जी इस खूबसूरत गीत तो बाद ते स्नेह तो बाद असीं इक बार फिर हाजिर हां
4: और जिंदगी दी जदों असीं गल करदे हां जिंदगी सानू बहुत कुछ सिखाउंदी है और जदों जिंदगी दे विच असीं अग्गे वधदे रहिंदे हां ते सिर्फ एक अध्यापक नहीं बहुत सारे अध्यापक हुंदे ने जदों असीं कुदरत दी गल करदे हां परिवारां दी गल करदे हां रिश्तियां दी गल करदे हां दोस्तां मित्रां दी गल करदे हां लेकिन जदों असीं एक वधिया सर्टिफाइड एजुकेशन लैणी हुंदी है ते सानू उस अध्यापक

0: तक दो एक चम्मच गरम मसाला 1/4 चम्मच जिन्ना कि तुहानू डाइजेस्ट हुंदा है। लाल मिर्च जिहड़ी अगर तुसीं इस्तेमाल करदे हो ते 1/4 ते हरी मिर्च जिहड़ी है तुसीं स्वाद अनुसार ते नमक भी जिहड़ा है उह स्वाद अनुसार इस दे विच पा सकदे हो। तेल तुहानू चाहीदा 1 to 2 चम्मच। पानी दी लोड़ पएगी तुहानू ते हरा धनिया जिहड़ा है उह गार्निशिंग लई तुसीं इहनू इस्तेमाल करना है
1: जी।
0: सो हुण दस्सिए फिर किस तरीके दे नाल इह तुसीं बनाउणा हैल्दी वेज कोरमा।
1: बिल्कुल,
0: सब तो पहला जी तुसी ए हेल्दी वेज कोरमा बनाने के लिए सारिया सब्जियों चंगी तरह धो लेना। धो के इन्हां दे छोटे छोटे

0: में ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਫੇੜੇ। ਮੇਰੀ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिक नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
3: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 4थे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ते रात 9:30 बजे आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पंजाबी नाटक सुनोगे सफेद लड्डू। लेखक होंगे राजीव शर्मा। रात 10:30 बजे तुसी अपना मन पसंदीदा फोन इन ते व्हाट्सएप आधारित प्रोग्राम सुनोगे तुहाडी फरमाइश। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जानकियां। असी अपने स्रोतियां नूं दस दईए कि दोपहर डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जरिए तुसी 3 बजे सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 दा समां रहेगा सौगात दा। पंजाबी खबरां दा सभा अपने स्रोतियां नूं दस दईए रात 8:30 बजे होएगा। ए सन प्रोग्राम दे वेरवे तहत अज दे रेंदे प्रोग्राम ते उना दा प्रसारण समा। मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 1:10 होन जा रहे ने। कुछ ही पलांच तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं गुरविंदर सिंह सोहता तो प्रादेशिक खबरां सुणो। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब दी हर मां अते भैण नूं मावां तीआं सत्कार योजना दी ब्रांड अंबैसडर ऐलानदिआं इस पहलकदमी नूं अपनी किस्म दा पहला समाजिक इनकलाब करार दित्ता है। उन्हां कहा कि 75 लाख तों वध औरतां दे बैंक खात्यां विच सन्मान राशि दे 3824.87 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पंजाब दीआं उन्हां सारीआं मावां ते भैणां दा तह दिलों धन्नवाद करते हैं जिन्हां मावां तीआं सत्कार योजना नूं बहुत वड्डी सफलता दवाई है। उन्हां कहा कि यह औरतां लई माली आजादी का रस्ता है। साडा टीचा 1 करोड़ बीबिया तक सत्कार राशि का लाभ पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह माली सहायता शायद औरतों अमीर ना बनावे पर यह उन्हां नूं आत्म सन्मान जरूर देवेगी। औरतां सत्कार दीआं हकदार ने। साडीआं मावां अते भैणां दा आशीर्वाद सानूं दुनिया की हर चुनौती पार करन विच मदद कर सकता है। अमृतसर के अजनाला रोड से GRPF के ASI सुखचैन सिंह ते कुछ अणपछाते व्यक्तियों वालों बीती शाम गोलीबारी की गई जिस विच ओ जख्मी हो गए। जानकारी मुताबिक शाम 7 बजे ASI सुखचैन सिंह ड्यूटी खत्म करने तो बाद जगदेव कलां स्थित अपने घर वाल जा रहे सन जिस दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 अणपछाते व्यक्तियों ने उन्हां ते गोली चला दी जो ASI की बांह विच लगी। इस संबंधी अमृतसर देहाती दे SSP कमलप्रीत सिंह चाहल ने जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि
1: ASI सुखचैन सिंह जिहड़ा GRPF दे विच तैनात सी अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपने घर जा रहा सी। रस्ते च कुछ अननोन बंदिआं ने इत्थे राउंड फायर कीता जिहड़ा इक बाजू ते लगा ते जिहड़ा जिरे इलाज हॉस्पिटल है आउट ऑफ डेंजर है। इस स्टेटमेंट मुताबिक इन्हां दा कोई डिस्प्यूट चल रहा सी अपनी जिहड़ी इहदी भरजाई सी गुरप्रीत कौर ते उहदे च इन्हां नूं इह शक आ वी उन्हां ने कोई साजिश रच के गुरप्रीत कौर ने कोई बंदे भेज के इन्हां ने अटैक कीता।
0: पुलिस वालों मौके पर CCTV कैमरिया की फुटेज की कोख की जा रही है तो हरियाणा समेत होर सूबों में गोली चलाने वालों की भाल की जा रही है। पुलिस वालों थाना अजनाला मामला दर्ज करके मुलजमान की भाल शुरू कर दी गई है। जलंधर नेड़े बंगा फगवाड़ा शाहराह अज तड़के हिमाचल प्रदेश रोडवेज की एक बस पलटन कारण 4 व्यक्तियों की मौत हो गई तो 15 तों वध लोग जख्मी हो गए। मृतकों में फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेसनल यूनिवर्सिटी की एक विद्यार्थन तो एक होर मृतक अमृतसर तो है। 2 होर मृतकों की अज तक पछाण नहीं हो सकी है। जख्मियों विचों ज़्यादातर LPU के विद्यार्थी ने। पुलिस हल्कों मुताबिक अमृतसर जा रही है बस मनाली तो आ रही थी तो एक पुल तो हेठां पलट गई। पंजाब के सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज CMC लुधियाना विखे मुख्यमंत्री सेहत योजना अधीन 100 तो वध सफल बाल सर्जरियों लई बाल सर्जरी विभाग की टीम वधाई दी है। इस संबंधी CMC लुधियाना विखे करवाए विशेष समागम में शिरकत करदिया सेहत मंत्री ने कहा कि यह प्राप्ति पंजाब सरकार और मैडिकल संस्था की सांझी वचनबद्धता का प्रतीक है। योजना तहत नवजम्मे बच्चों और होर बच्चों कई तरह पेचीदा सर्जरियां की गई जिस नाल वख-वख समाजिक ते आर्थिक पिछोकड़ वाले परिवारों को वड्डी राहत मिली है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना का उद्देश लोगों को उच्च पदरी डॉक्टरी इलाज मुफ्त मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार सूबे के सेहत संभाल ढांचे लगातार मजबूत कर रही है ता जो हर नागरिक तक म्यारी सेहत सेवावां पहुँचाई जा सकन।

फौजी वीरानी प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों पेश कीता जा रहा है। फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत तुहाडे नजर कर रही हां, ये जवानी है दीवानी फिल्म दा। आवाजां अरिजीत सिंह ते हर्षदीप कौर दियां। इस गीत नूं लिखिया अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत निर्देशक ने प्रीतम।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: की क्या है, तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं, अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
3: जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर।

0: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: वही मोनो तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे एचआईवी किवें फैलदा है।
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे ता सुन एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: फौजी वीरो प्रोग्राम च तुहाडे नजर कर रही हां कॉकटेल फिल्म च लिया गीत आवाजा नीरज श्रीधर दियां ते नाल साथ निभाया कविता सेठ ने और इस गीत नूं लिखिया इरशाद कामिल ने संगीत निर्देशक प्रीतम।

0: करने जा रहे हैं।
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सदर गी पामेला से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने भारत EFTA TEPA के वादे सिलसिले में भारत स्विट्जरलैंड शराकतदारी को मुस्तहकम करने की खातिर सदर पामेला की कोशिशों की सताइश की। इससे कबल स्विट्जरलैंड के सदर ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलहाय अकीदत नजर किए। सदर पामेला आज शाम सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सदर मुर्मू स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब के एजाज में एक सरकारी जियाफत की भी मेजबानी

0: स्विट्जरलैंड के सदर गी पामेलों के साथ दोतरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड तजारत सरमायाकारी को मिलकर फरोग देने और दुनिया के लिए काबिल भरोसा सप्लाई चेन कायम करने के लिए पुरअज़्म है। भारत और स्विट्जरलैंड ने मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत EU आजाद तजारती माहदे की सताइश की। अमरीकी फौज ने कहा है कि कैरेबियाई समंदर में मुबैना ड्रग स्मगलिंग से वाबस्ता एक कश्ती पर ताजा हमले में 4 अफराद हलाक हुए हैं। और भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलियां जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे औहदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, एह कोई नियमित रोजगार नहीं है।
5: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरो, खबरां तो बाद फिर हाजिर होए हैं तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। तुहाडी नज़र कर रही हां सड़क फिल्म दा गीत। आवाज़ां दित्तियां ने अनुराधा पौडवाल ते कुमार सानू ने, गीतकार ने समीर और संगीतकार नदीम श्रावण।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: फौजी वीरो, प्रोग्राम च आखिरी गीत तुहानू सुनाण जा रही हां, ऐ दिल है मुश्किल फिल्म दा। आवाज अरिजीत सिंह दी, गीतकार ने अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
2: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
2: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि

0: बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामलॉन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामलॉन के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
4: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
5: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
4: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
5: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

0: देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
2: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य में से एक हो गया है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
1: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
3: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांवों और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
1: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड

0: परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज, अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने सतीश चंद्र, आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज च। कानू कीती असां नाल बस वे, कोई दोष असां वाला दस वे।

किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा ते पिंड खानी दी ढाब मलोड़ तो चिट्ठी लिख रहा सानू शमशेर सिंह कौलतर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर सिंह ते मनताज। ते अगली चिट्ठी साढ़े कोल पहुंची है जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीत पाटिया ते पप्पी पाटिया। ते इन्होंने सानू सविता साथी दे किसी भी गीत की फरमाइश की, आओ सुनदे हां सविता साथी दवास जी विच ये गीत।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते स्विट्जरलैंड दे राष्ट्रपति गाय पार्मलिन ने अज नवी दिल्ली च दुवल्ली गल्लबात कीती। वख-वख खेतरां विच दुवल्ले सहयोग विच प्रगति दी समीक्षा कीती गई। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत ईयू आजाद व्यापार समझौते की शलाघा कर

सदाबहार नगमे पेश कर रही तुहाडे सारिआं दी अपनी दीपाली वालों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार अदाब ते सत श्री अकाल। कुछ नगमे दिल के बहुत करीब होते हैं, कुछ गीत बीते लम्हों की तस्वीर होते हैं। वक्त बदल जाता है, मौसम बदल जाते हैं, मगर खूबसूरत गीत कभी पुराने नहीं होते।

कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ एहसास लफ्जों के मोहताज नहीं होते। जब दो दिल एक ही ख्वाब देखने लगें तो उनकी राहें भी एक जैसी हो जाती हैं।

कभी एक मुस्कान दिल की कहानी कह जाती है, कभी एक नजर सारी दुनिया भुला जाती है। प्यार में जरूरी नहीं हर बात कही जाए, कुछ एहसास खामोशी में भी समझ आ जाते हैं। सदाबहार गीत प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर के अंदर तो पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम च अगला गीत मुकेश दी आवाज, फिल्म कभी कभी चले आ गया। इस गीत में लिखिया साहिर लुधियानवी ने और निर्देशक ने खयाम।

जिंदगी भी कितनी खूबसूरत कहानी है। कुछ पल हंसी है, कुछ पल यादों के नाम है। वक्त गुजरता जाता है, लम्हे बदलते जाते हैं, मगर कुछ अल्फाज दिल में हमेशा जिंदा रह जाते हैं। सदाबहार गीतांश आखिरी गीत तुहाड़े नजर कर रही हैं। आंधी फिल्म चुलिया, आवाजां किशोर कुमार ते लता मंगेशकर दियां। इस गीत नु लिखिया गुलजार ने और संगीतकार ने राहुल देव बर्मन।

हुणे तुसी सरवण कर रहे सी श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शबद कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री

अकाल पुरख प्रभु सारी सृष्टि दा करता तरता है। कुल कायनात उस असीम प्रभु दी आराधना करदी है। हां, अपने विचारां अनुसार विधियां वखो वखरियां हो सकदियां ने, पर सबना दा इष्ट अकाल पुरख है। उस प्रभु दा परापूर्बला नाम सतनाम है। उंज तां उस दे अनेकां गुणा करके नाम भी अणगिणत हन। प्रभु दा नाम मनुखता दा आधार है। नाम कल्याणकारी ते सर्वहितकारी है। ये नाम हर प्रकार नाल सहाई है। साध संगत विच जाके जप्या सारे कारज संपूर्ण हुंदे हन। इस नाम नूं बहुत सारे दृष्टांत दे के वड्याया गया है। नाम डुबदे लई बेड़ी है, बुझ रहे दीवे वास्ते तेल है, अग्नि नूं शांत करन वाला जल, भुख नाल विलकदे बालक लई दुध है, रण खेत्र विच नाम नाल खड़े होण वाला भरा है, भुखे लई आहार, किरसानी लई मेघ है, शेर वांग निडर है, रख्या है नाम। नाम दी उपमा तां बहुत है, प्रभु आप ही उपमा जानदे हो। पवित्र करन वाला नाम सिमर के पवजल तरिया जा सकदा है। राग तिलंग विच उचारे शब्द विच भगत नामदेव जी नाम नू नेत्रहीन मनुख लई डंगोरी बयान करदे हन ते नाम नू निमाणिया गरीबां दे जीवन दा आधार दसदे हन। सच्चे नाम वाला प्रभु करम करदा है, रहमतां दा खजाना है, सर्वव्यापक ते सदा अंग संग रहण वाला प्रभु अते उसदा नाम है। हे प्रभु, तू जीवन दाता सब कुछ देवनहार है, तू धनवान है, ये समर्था किसे होर विच नहीं है, तू सियाणा सब कुछ देखण वाला है, मैं तेरी की बात करा। नामदेव दे स्वामी प्रभु हरि तू ही है, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। सरवण करदे हां प्रोफेसर दर्शन सिंह अते उनां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: इस शब्द गायन कीता सी प्रोफेसर दर्शन सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। इस लोक विच संसारी जीव रोगी हन, रोग रहत सिर्फ अते सिर्फ सच्चा गुरु है। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। असल विच संसारी जीव जो प्रभु दे निकटवर्ती नहीं, वो विकारां दी मैल कारण अपवित्र हन। क्योंकि संसार रोगी नाम दारू, मैल लागै सच बिना। पर जे जीव सदा प्रभु दा नाम जपे तां फिर कोई रोग नेड़े नहीं आउंदा। क्योंकि नाम के तारे सगले जंत, नाम सारे रोगां दा निवारण करदा है। ते ए नाम रूपी औखद देण वाला प्रभु दयालु है। बस लोड़ है उस प्रभु अते उस दे सच्चे नाम दी बरकत वड्याई नूं जानन दी। तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी नाम दी महिमा बयान करदे ने। औखद तेरो नाम दयाल, ये वार्ता सुना रहे ने डॉक्टर अमरजीत सिंह।
1: सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी दे इस पावन शब्द दी पहली ही पंक्ति साडे सामने जीवन दा एक बहुत डूंघा सच रख दिंदी है। औखद तेरो नाम दयाल, भाव हे दयाल प्रभु तेरा नाम ही मेरी दवाई है। मनुख जदों बीमार हुंदा है तां दवाई लभदा है, शरीर विच दर्द होवे तां डाक्टर कोल जांदा है, मन विच बेचैनी होवे तां किसे नाल गल करदा है, अते जदों जीवन विच कोई वड्डी मुश्किल आ जावे तां किसे आसरे दी भाल करदा है। पर गुरु साहब सानूं एक अजिही औखदी वल इशारा करदे हन जो मनुख दे सब तो डूंघे रोग दा इलाज करदी है, वह औखदी है प्रभु दा नाम। इत्थे एक गल बहुत स्पष्ट समझना जरूरी है, गुरबाणी जदों नाम नूं औखद आखदी है तां इस दा अर्थ यह नहीं कि शरीरक बीमारी विच डाक्टरी इलाज जां दवाई दी लोड़ नहीं। शरीर दी बीमारी शरीरक इलाज लई जरूरी है, पर मनुख सिर्फ शरीर नहीं, उस दे अंदर एक मन भी है, एक चेतना है अते एक आत्मक जीवन भी है। नाम उस अंदरले जीवन की औखदी है। असी आम तौर पर रोग का अर्थ शरीरक बीमारी लेंदे हाँ, पर गुरबाणी मनुख दे रोग नूं होर डूंघाई नाल वेखदी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा चिंता डर, ये सारे मन दे रोग हन। बाहरों मनुख किन्ना भी तंदुरुस्त दिखाई देवे, जे वह अंदरों चिंता होमै ते विकारां विच सड़ रहा है तां उसनूं असल सुख कित्थों मिलेगा। इसलिए श्री गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब विच फरमाउंदे हन, सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। इत्थे सर्व रोग का भाव मनुख दे उन्हां अंदरूनी रोगां नाल भी है जो उसनूं अपने मूल नालों तोड़ देंदे हन। शरीरक रोग शरीर नूं कमजोर करदा है, पर होमै मन नूं कमजोर करदी है। शरीरक बुखार तन नूं तपाउंदा है, पर क्रोध मन नूं तपाउंदा है। भुख शरीर नूं बेचैन करदी है, पर लोभ अते तृष्णा मन नूं कदे तृप्त नहीं होण दिंदे। इन्हां रोगां लई गुरु साहब नाम दी औखदी दसदे हन। रोग दी जेकर पछाण करनी है ते गुरु साहब जी जिक्र करदे हन, परमेसर ते भुल्लिआं व्यापन सभे रोग दे गुरवचन अनुसार प्रभु नूं भुल जाणा ही मनुख दी अंदरूनी बेचैनी दा मूल बन जांदा है। जदों मनुख अपने जीवन दा केंद्र प्रभु दी थां अपनी होमै, अपनी इच्छा, अपनियां कामनावां अते दुनियावी प्राप्तियां नूं बना लैंदा है तां उस दे अंदर एक अजिही भुख पैदा हुंदी है जो किसी चीज़ नाल पूरी नहीं हुंदी। एक चीज़ मिलदी है तां दूजी दी इच्छा पैदा हो जांदी है, एक चिंता दूर हुंदी है तां दूजी आ जांदी है। इस लई श्री गुरु नानक देव जी सचेत करदे हन, खसम विसार किए रस भोग ता तन उठ खलोए रोग। जदों जीवन दे मालक नूं भुला के मनुख सिर्फ भोगां अते विशियां विच रुझ जांदा है

हर हर नाम औखद मुखदेव है, काटे जम की फंदा। इस शब्द गायन की तसी पाई रविंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक सन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6 बज रहे ने। हुण तुसी सुनो के हिंदी च समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
3: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
4: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
3: And Department of Science and Technology, our DST.
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
5: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
2: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है।

0: ने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया कैम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले दो वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को स्वीकृति दी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में भी कल तक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਐਸ ਵੇਲੇ 6:05 ਤੇ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

हुन तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे इतिहादी प्रोग्राम। अज इस विच कम दियां गल्लां, अज दे भाग, कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल डॉक्टर सुखजीत कौर पंजाब च लीची दी काश्त बारे जानकारी देणगे। सत बज के 10 मिनट ते जन सेवा से देश सेवा, ये प्रोग्राम तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तों। सत बज के 45 मिनट ते विविधा प्रोग्राम च बिना बीज दा काव्य पाठ सुनोगे। सत बज के 55 मिनट ते समा रहेगा प्रायोजित प्रोग्राम लम्हे दा। आठ बज के 5 मिनट ते हिंदी गीत दा आनंद माणोगे। अठ बज के 10 मिनट ते जन सेवा तो देश सेवा तक, इस लड़ी के तहत सुनोगे स्टार्टअप इंडिया ते विशेष प्रोग्राम। अठ बज के 4 मिनट ते पंजाबी गीत सुनवाया जाएगा। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट प्रोग्राम पेश करांगे साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 बजे पंजाबी नाटक सुनोगे सफेद लड्डू, लेखक राजीव शर्मा। दस बजे समा रहेगा मुख खबरां दा।

10:02 ते हिंदी कवि गोष्ठी सुनोगे। इस विच भाग लिया है कुसुम खुशबू, अश्वनी कुमार, मनु मेहरबान, जसप्रीत कौर फलक होना ने। रात 10:30 पेश करांगे प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश, जिस विच तुसी व्हाट्सएप ते फोन इन राही अपनी पसंद दे गीत सुन सकोगे। 11:10 ते प्रोग्राम सौगात पेश करांगे DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र तो। सो इसी जी अज प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुन शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकर

0: गया है पटल। जो कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण सुनते हैं देश गान।

0: कम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: एनी रात गए SMS? KYC अपडेट करो नहीं तो खाता ब्लॉक हो जाएगा। लिंक ते क्लिक कर दा, ब्लॉक ना हो जाए किते।
3: रुको, चेक कितना लिंक सिक्योर है, सेंडर तोड़ा बैंक है। KYC अपडेट ले अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों वास्ते अपना दरवाजा खोलना। फर्जी KYC अपडेट लिंक तो बचो। RBI कहता है,
4: जानकार बनो ते सचेत रहो।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब दे मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रिष्टाचार अते नकदी बदले तबादले मामले की CBI जांच दे हुकम दित्ते। पंजाब कैबिनेट वालों अज रणजीतगढ़ डिवेलपमेंट अथॉरिटी RTA बिल 2026 मंजूर। जलंधर नेड़े बंगा फगवाड़ा शाहरा ते बस पलटान कारण 4 व्यक्तियों की मौत अते 16 जख्मी। पंजाब ने दोबारा खून दान करन वाले स्वै इच्छित दानियां दी गिनती विच देश भर विच पहला स्थान हासिल कीता। ते पंजाब हरियाणा ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच आज शाम तो मौसम विच बदलाव आउण दी संभावना। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब दे मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रिष्टाचार अते नकदी बदले तबादले मामले दी केंद्रीय पड़ताल या ब्यूरो CBI जांच दे हुकम दित्ते ने। अदालत ने यह फैसला एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों मुख्यमंत्री दे विशेष ड्यूटी अधिकारी नाल संबंधित कथित भ्रिष्टाचार अते उच्च प्रोफाइल नकदी दावियां तो बाद लिया है। इस तो पहला एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कथित तौर ते पंजाब दे पुलिस डायरेक्टर जनरल नूं 3 पत्र भेजे सन जिन्हां विच FIR दर्ज करन दी मांग कीती गई सी, पर आज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस दौरान भाजपा ने इल्जाम लाया कि भगवंत मान दी अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार दे अधीन पंजाब विच कानून व्यवस्था

0: ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲੋ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਵਜੇ, ਉਹ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। 4 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25% ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਵੀਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੋਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। HNI ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਰੋਸਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, PTPC ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਨਚੀਕੇਤ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम ज्योति है, मेरी फर्म का नाम है ज्योतन्मा हर्बल। हम लोग यहाँ मेले में आए हैं लुधियाना, 38वां मेला है ये स्थापना दिवस, और हम बनाते हैं कॉस्मेटिक हर्बल केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर, और हम न्यूट्रिशन वेलनेस भी प्रोडक्ट हमने शुरू किया है। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारा खुद का आईडी है, हमारी Instagram ID है, फेसबुक है और हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर हम चलाते हैं, तो ऑनलाइन हम सेल करते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जिसको भी हेयर फॉल है तो वो 15 दिन में हमारा बिल्कुल रोक देता है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है, और 3 महीने में किसी के मेलानिन प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है। तो उसके लिए हम न्यूट्रिशन भी खाने के लिए देते हैं, और लगाने के लिए हमारा प्रोडक्ट है, तेल है, शैम्पू है, सीरम है, हेयर पैक है। तो इससे क्या है, 3 महीने में जड़ से काले बाल आना शुरू हो जाते हैं, ये हमारे खुद के कस्टमर की फीडबैक है। ठीक है जी, उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ भी शुरू करिए, लेकिन अपना कुछ ना कुछ करिए। आपके घर में चने तो आपको मिल जाते हैं, बच्चों को कोई भी न्यूट्रिशन आजकल नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे मोमोज, फास्ट फूड, जंक फूड पे ही निर्भर हैं केवल। तो हम महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि हम कुछ भी शुरू करें, छोटे से छोटा अपना काम जरूर डालें, कुछ ना कुछ, चने ही पीस के दें, दालें रोस्टेड करके दें, तो उससे हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा।
2: मिस्टर बलविंदर सिंह QOR ते किसानों अपने बैंक दिया वक्तवर सुनता बारे दसा।
0: मैं 38वें सिपट के स्थापना दिवस के उत्ते सारे नूं वधाई दिंदा हां, सिपट दे नाल पार्टनरशिप कर रहे हैं। साडा परपस पार्टनरशिप करन दा किसानां दी इनकम किदां वधाई जावे उहदे उत्ते साडा ज़्यादा जोर रहिंदा है। अज दी डेट दे विच असीं इह मान नाल कह सकदे हां कि कोई भी फाइनैंशियल नीड, कोई ट्रांजैक्शन, कोई बिजनेस मॉडल जिहड़ा बिजनेस नूं सपोर्ट करदा है, असीं उस टेक्नोलॉजी दे विच पूरे इंडिया दे विच टॉप बैंक हैगे आ। ते 250 तों उपर ब्रांचां साडियां जिहड़ियां ने ओह रूरल सैक्टर दे विच ने जां सैमी अर्बन सैक्टर दे विच ने। जे असीं अज दी डेट दे विच कहिंदे आ कि इंडिया दी इकोनमी 3 ट्रिलियन हो गई है, उहनूं 5 ट्रिलियन लैके जाणा है, ते सानूं कुछ डिफरेंट करना पवेगा। जो अपनी रीच है, जिदा सारे सीनियर्स ने, सीनियर डिग्नरीज ने उन्होंने एड्रैस किया कि असी एग्रीकल्चर नूं सिर्फ जो अही सीमित किया है प्रोडक्शन लिए, उस प्रोडक्शन नूं असी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी, प्रोसैसिंग यूनिट एंड ग्लोबली किदा लैके जा सकते हैं, उहदे विच जिहड़ा है वह हर तरह की ट्रांजैक्शन दे विच, हर तरह की फाइनैंशियल नीड दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ।
2: ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ICS ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦਾਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
3: ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦਹਾਨ ਅਤੇ ਗੇਹੂੰ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਣਕ 'ਚ 40 ਤੋਂ 45%, ਅਤੇ ਦਹਾਨ 'ਚ 25 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ

0: वो बच रहे हैगे या नहीं हैगे, क्योंकि हवा पानी जिन्नी भी चीज़ें हैगी आप उन्होंने भी थोड़ी जी चिंता कर लगे हैगे। मेरा तुहानू अही समय कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि सानू अज के समय लोड है कि किस पासे सोचिए, पर्टिकुलरली पंजाब च। मैं तुहानू एक चीज़ कहना चाहवांगा कि जो पंजाब की गल करिए, आलू की प्रोडक्शन की गल करिए, तो आपां नू उस दे पासे ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं हैगी है, क्योंकि पंजाब लगभग 65% पूरे भारत का जोड़ा सीड हैगा वो सप्लाई कर रहा है। अज की जी कृषि हैगी वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड ना हो के पर्टिकुलरली पंजाब के वेरवा रखिए, तो प्रॉफिट ओरिएंटेड से जाने की लोड़ हैगी है। तो मेरा यही एक चीज़ कहना चाहवागा कि पंजाब में आप अगर सीड हब के तौर पर अगे करिए, तो जोड़ा आप अज तक का प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट को आप कि अगे बढ़ा सकते हैं, उस पास सोचने की लोड़ हैगी है। क्रॉप डाइवर्सीफिकेशन एक इंपोर्टेंट इशू हैगा, लेकिन उससे भी बहुत इंपोर्टेंट चीज़ हैगी कि पॉलिसी। पहला असी पॉलिसी की गल करिए, क्योंकि पॉलिसी मेकर इतने बैठे हुए है, नाबार्ड से साढ़े साथी आए गए, बैंक से भी है। पहला असी करते कि 3 P से काम करते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गल करते। आजकल आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाल फार्मर जी प्रेजेंट कह सकते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंटली जो पॉलिसी मेकर है। टेक्नोलॉजी अजकल कोई घाट नहीं है, जितने भी संस्थान है बहुत टेक्नोलॉजी पहुँच गई है। फार्मर तक तो नहीं पहुँचे उस लैवल तक, लेकिन फार्मर तक पहुँचाने लिए जो सब तो बड़ा गैप हैगा या ब्रिज की लोड हैगी वो है पॉलिसी। पॉलिसी सपोर्ट की लोड हैगी, अगर पॉलिसी सपोर्ट चंगी तरह मिल जाए, तो कोई इदा की टेक्नोलॉजी अगर फार्मर तक पहुँचे, तो असी जोड़ा प्रॉफिट हैगा। मैं तुहानू दसना चाहवांगा कि जिन्ना असी प्रॉफिट कमा रहे किसान वीर अपने, वो लगभग जिन्ना भी अपना खेत से पकाते हैं तो असं खाते हैं, उस लगभग 35-40% किसान को मिल रहा है। दूजा जरा 60-65% हैगा वो मिडलमैन के हाथों से हैगा, उस मिडलमैन के हाथों से लैके किसान के हाथों से किदा पा सकते हैं, उसलिए सानू पॉलिसी की लोड़ हैगी है। तो मैं यही कहूँगा कि 2-3 पॉइंट सके, क्योंकि अपन उसी तरीके काम करने की लोड़ हैगी है। सर तुम नाबार्ड च आए हो, क्योंकि मैं अटारी में रिप्रजेंट करता है, तो थोड़ी जानकारी लिए दसना चाहवागा कि साढ़े देश से लगभग देश जो है 731 KVK है, उन KVK फैसिलिटेट करने पूरे जोनल एक कोऑर्डिनेशन बनाया होगा, तो उन्होंने अटारी रिप्रजेंट कर दी है। तो पूरे देश से 11 अटारी है, या इतने भी 11
1: के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है आज यहाँ पे आप लोगों से अपना कुछ जो ज्ञान है उसको रखने का, और इसके साथ साथ सिफिट को बधाई देने का जो मुझे मौका मिला है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम ये संस्थान यहाँ पे बना था 1989 में, और अभी 38th फाउंडेशन डे है, तो उनके 37 साल यहाँ पे काम करते हुए हो गए, जो देश के लिए वो काम कर रहे हैं, जो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए वो काम कर रहे हैं। खेती करना एक बात है, पर खेती से जो उपज आती है उसका बचाव करना उससे ज़्यादा जरूरी है, और वो ये काम ये जो संस्थान है वो कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। अब मैंने खुद से इनकी बहुत सी टेक्नोलॉजीज को देखा है, और इन्होंने जो ट्रांसफ़र किया टेक्नोलॉजी को, आई थिंक ICR के ये उन इंस्टीट्यूट्स में से एक है जिसने टेक्नोलॉजी को ग्रास रूट लेवल पे ट्रांसफर किया है। तो मैं इनको आज इस उपलक्ष्य में बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर नचिकेत मोर को स्पेशली कि इन्होंने बुलाया, नाबार्ड को बुलाया, और नाबार्ड में स्पेशली मुझे बुलाया गया कि हम लोग एक जो नाबार्ड का भी आप देखें तो नाबार्ड के 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 4 डिकेड से हम जो है देश की सेवा कर रहे हैं, तो हम और ये 37 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, तो दोनों एक्सपीरियंस मिला करके हम लोग आज एक साथ चलने का हमने निर्णय लिया है। तो इसलिए भी ये दिन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने आज एक आपने देखा है कि एक MOU साइन किया है जिसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनक्यूबेशन, ट्रेनिंग, इसके ऊपर मिलजुल के काम करेंगे, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, जो भी खेती में जो भी प्रोड्यूस होती है उसको कैसे बचाया जाए उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप आज इस उपलक्ष्य में सभी लोग एक जोर से ताली बजाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कदम हमने उठाया हुआ है। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा और दूसरे वाइस चांसलर साहब, उन्होंने

0: मंत्री कहा 1.5 लाख करोड़ का हमारा नुकसान है खेती से, ये खेती की जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, पर ये 1.5 लाख नहीं है, ये 1.5 लाख से कई गुना ज्यादा है। आप देखिए तो 1.5 लाख तो सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, अगर हम उसको फूड लॉस, फूड वेस्ट हम साथ में मिला दें, जो हम थाली में छोड़ देते हैं या जो होटल की प्लेट्स में वेस्ट हो जाता है या जो आपका कैटरिंग का वेस्ट है, तो इतना ज्यादा है, ऑलमोस्ट तो 17% है। तो अगर वो 30% आप ले जाएंगे तो आप देखिए कहाँ पे बात पहुंचती है, उसमें तो ये 1.5 लाख क्या हो? मुझे लगता है 3 से 4 लाख तो आराम से हो जाएगा। पर अगर उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो जो हम उसके ऊपर लेबर लगा रहे हैं, जो प्रोड्यूस करने के लिए हम लेबर लगा रहे हैं, अगर उस लेबर को हम कहीं दूसरी जगह लगाते, किसी और काम में लगाते, तो उतनी हमारी बचत और हो जाती। तो इसलिए ये जो लॉस है बहुत ज्यादा है, इसके लिए इंस्टीट्यूट कार्यरत है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए, किसानों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो है ये बहुत बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीके विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी दिंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसे तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगदा। अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
3: हाँ जी शिंदरा सिंह जी,
4: जी
3: कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल दसीए थानू, थोड़ा थोड़ा
4: दसना पैना जी।
3: सो कल दा प्रोग्राम जिहड़ा आ ओह इदां आ
4: जी,
3: सवेरे 6:30 बजे खेतीबाड़ी प्रोग्राम च सरों दीआं किस्मां,
4: अच्छा
3: इस विषय ते गल होऊगी
4: जी।
3: शाम नूं देहाती प्रोग्राम च किसान वाणी
4: जी,
3: बाकी होर जिहड़ा अपना सिलसिला चलदा ओह चली जाणा है।
4: ते की हुकम आ फिर?
3: हुक्म ये आ भी जिहड़ा मौसम आ ओह कहिंदा मैं हाले इदां दा ही रहिणा, मंदा नहीं आ, ते हो सकदा भी आउण वाले दिनां च कहिंदे थोड़ी बहुती बदलवाई हो जाए,
4: समें दे लिहाज नाल मन्नणा पैणा,
3: कई वारी पै आ जांदा इधरों उधरों इकट्ठा हो के,
4: ओह तां है।
3: ते आपां चलीए जी
4: जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जन सेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है। जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था। और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए। इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है। तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है वो कैसे एक सफल यात्रा रही है और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण अंग साबित होने वाला है। तो इस विषय पर विस्तार से आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ शामिल हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा तकनीकी और आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
1: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
2: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक, कतारों से क्लिक तक, तो ये जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत

0: करके ऐप उन्होंने गुजरात में चलाई थी, जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते थे। वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति में जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
1: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं, उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है। और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास, उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है। तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
2: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो JCB है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
1: जी।
2: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना JCB को ट्रेन पर ले जाया जाए। तो इट वॉज उनको कितने सारे JCBs को अहमदाबाद और उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बाय ट्रेन, बाय रोड के बजाय बाय ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, वो सैटेलाइट सेंटर जो है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी
1: जी।
2: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक एक झुंड में जाते हैं, तो उनको लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च न हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर न रहे और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले। ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री। और जैसे वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था, कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें दो बातें हैं, एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी
1: जी।
2: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है इसको मैंने अपने किताब में लिखा है, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12-digit रेवोल्यूशन है,
1: बिल्कुल,
2: तब लोग कह रहे थे, कह रहे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ये सचमुच में 12-digit रेवोल्यूशन है।
1: बिल्कुल। और प्रसून जी, अभी जिस बात की हम, जिस विषय पर हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला 1 रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस माध्यम से सरकार ने अब तक ये आंकड़ा है कि लाखों करोड़ रुपए तक बचाए हैं, सीधे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है, सीधे बैंक खातों में अब किसी भी योजना का लाभ पहुंच जाता है, बिचौलियों के बीच कोई पैसा हस्तांतरित नहीं होता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ है

0: और जो हेरा फेरी है उसको रोका गया है बड़ी संख्या में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो डीबीटी मॉडल है उसने भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया, और कैसे तकनीक ने इसमें खासतौर पर बड़ा रोल निभाया है?
1: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन डीबीटी के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या KYC होता है उससे जो राशन कार्ड या खाद सब्सिडी है वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है। पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है, और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी है जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
0: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताजा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो UPI ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचे, गांव में, रेड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह UPI के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शंस हो सकें, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए?
2: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में, सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की। जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना की जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाएंगे, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। फिर उसके बाद में जब NPCI ने UPI स्टार्ट किया और जब नोटबंदी हुई उसके बाद में कैसे इसको प्रोत्साहन मिला, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है वो कोविड के वक्त में। आप देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते विदाउट कोविड के, और कम से कम 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए कि जो UPI की ट्रांजैक्शन की बात हम आप कर रहे थे, जो एकदम करोड़ों में हो रहा है, दिन में, एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसमें एक मैं हमेशा जो मैं MBA की बिटसॉम में MBA की क्लास को पढ़ाता हूँ, और हर साल उस क्लास को या कहीं कहीं पर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपनी बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है, मैंने मतलब पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। मैंने फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप ATM कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं 1 महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितने UPI ट्रांजैक्शन किए, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं जितने क्लास में होते हैं या कहीं पर। तो हम लोग अभी मतलब इसको जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई गए आप सब्जी लेने गए तो UPI कर दिया, ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है आप पैसे देने निकले या उसके पास खुले नहीं होते तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी एडॉप्शन में पीछे होते हैं, लेकिन इतना फास्ट एडॉप्शन जो हुआ है ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित

0: है, और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उन्होंने उस मैसेजिंग को कांस्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे, ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेलीमेडिसिन, जो मतलब डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गांव में डॉक्टर ना हो, तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है, हम लोग इसको भांप नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना लोग YouTube वगैरह से कोर्स, ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं, उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
1: बिल्कुल, यानी
0: एक बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक।
1: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूंगा, जैसा कि अभी शंकर जी बता रहे थे कि इन बीते कुछ वर्षों में ऐसा डिजिटल परिवर्तन हमने देखा है। कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन की हम UPI की तो बात कर ही रहे हैं। तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज को हासिल कर लिया। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है
2: जी। एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है। और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ, जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के थ्रू होता है। और उसमें से जो अपने छोटे MSMEs या उद्यमी हैं उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो MSME भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और MSMEs को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे MSMEs अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के top 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए। क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड, फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स, इंक्लूडिंग MSMEs, हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है। और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और जो बाकी इकोसिस्टम है, जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है, उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो, सेंसर लग रहे हो, या चाहे हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हो। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
1: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा, इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा। और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है भारत को, जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर, जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर, हम पहले दफ्तरों में, कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थी, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे, एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है।
2: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है, चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो, और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए, जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं तो वहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योर

0: गेट से उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं। ना सिर्फ भारत सरकार उस पर सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड है या इनोवेशन वर्ल्ड हैं वो भी इस पर अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है तो उससे काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
1: बिल्कुल। अभी शंकर जी, प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं उससे कैसे इससे मदद मिली है?
2: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितने अफसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पौंडीचेरी से गया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इससे अचरज नहीं होता है हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
1: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का। 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, जिस इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है। तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
0: बहुत ज़्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गॉव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से

0: रुझाव में परिवर्तित हो गए हैं और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा, डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहां पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल, उसके बारे में बातचीत करते हैं और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शंस है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है। और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा, आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज़्यादा बढ़ा है, और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
1: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने माईगोव का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचे, और खासतौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है, और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत सराहनीय है। जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं, पहले ये होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं, इसको तो क्राउड सोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है और हम लोग उसको और आगे कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसको और प्रधानमंत्री की जो दिशा है उसको अगर बाकी सांसद और MLA लें तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं, लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हो, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग इस विचारधारा से जुड़ने में इतना उत्सुक है और इतनी उनकी पार्टिसिपेशन है।
1: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गांव में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है। संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में, वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना पर आपके क्या विचार है? प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
2: बहुत बढ़िया पहल है ये, और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें, जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को लेके उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया,

0: है, जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस जियो लोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अब मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे, तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा, उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है, वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
1: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है, सेमीकंडक्टर या चिप, उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है, वो कैसे आने वाले समय में, भविष्य में, भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है, जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए, पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला, जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स, जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनीज चला रही है। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को, जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है। तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन अगर आप देखिए, 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिजाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो, या हमारी कार हो, या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को जॉइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे MSMEs या हमारे फार्मर्स हैं, उनको भी तैयार कर रही हैं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे FTAs भी साइन किए हैं, जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
1: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने ये साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं, तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की ये परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का कि आप कार्यक्रम में जुड़े और जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आप शामिल हुए, अपने विचार हमारे

0: श्रोताओं के साथ आपने साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7:44 ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵਿਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੀਣਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਾਵਿ ਪਾਠ।
4: आज की कविताओं की कड़ी में सबसे पहले आपको सुनाती हूँ होना और जीना। एक होने में और जीने में कितना अंतर है, सुनिए आप। होना और जीना, सरसराती हवाओं ने कुछ कहा, सुना सन्नाटों ने जुबां खोली, आवाज़ आई क्या, फूल पत्तों ने संकेत दिए, समझे कि नहीं, फिजाओं ने रस घोला, चख नहीं पाए क्या, कुछ दिल ने कहा, क्या कुछ भी नहीं मालूम हुआ, प्रफुल्लित बढ़ती आती है जल धाराएं, हंसी की खनक सुनी, चीखती चिल्लाती बढ़ती आती राहें, स्तब्ध क्यों हो, तुम्हारे भीतर का कोलाहल तुम्हें बहरा कर चुका है, इस चीखो पुकार में चुप्पी तो कब से रूठ गई है, चैन तो कभी था ही नहीं, अस्तित्व विहीन, जो पास से गुजर गई तुम्हें छू न सकी, वह तो थी ही नहीं, क्यों लोलट लट की बाट तकते हो, पहचान ना पाओगे, आत्मचिंतन की गिरह थामो, बढ़े चलो निर्विकार रंग में, कंठ तक डूबे हो, स्नेह स्निग्ध सुधा बरसालो, मर मर कर तो सभी जीते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर लो, जीवित होकर जीवन जीना क्या कर पाओगे, मौन से संवाद और अज का स्पंदन महसूस कर लो, तुम हो, तुम्हारे होने और जीने का अंतर पाट लो, तुम हो, तुम्हारे होने और जीने का अंतर पाट लो। अब एक आपको दूसरे ही तौर पर ले जाती हूँ, इश्क की एक बूंद, आंखें सूखे तालाब की तलहटी सी खुश्क, जल का कतरा कहीं नहीं, आंखें सूखे तालाब की तलहटी सी खुश्क, जल का कतरा कहीं नहीं, प्यास आंगन के छीके पटंगी है, छीके की नजरें बाहर लगी हैं, गैर इलाके का कोई मुसाफिर आ गया तो घड़े के नीचे की मिट्टी कुछ बूंदे समेटे हैं, दर्द से कराह रही ढूंढती इश्क की रूहानी बारिश, घड़े के नीचे की मिट्टी कुछ बूंदे समेटे है, दर्द से कराह रही ढूंढती इश्क की रूहानी बारिश, सोहनी का मटका दरिया पी गया, दरिया प्यासा हो।

हो गया, पानी लाल हो गया। सोहनी का मटका दरिया पी गया, दरिया प्यासा हो गया, पानी लाल हो गया, माशूक को लील लिया, दीवानगी पानी हो गई। माशूक को लील लिया, दीवानगी पानी हो गई, पानी पी पी मुटियारों ने रोग पाल लिया, पानी पी पी मुटियारों ने रोग पाल लिया। घर घर इश्क हो गया, झाड़ फूक कौन करे, घर घर इश्क हो गया, झाड़ फूक कौन करे। पानी जवानी जी रहा इश्क की एक बूंद, पानी जवानी जी रहा इश्क की एक बूंद, कतरे कतरे में फैली जमाना इश्क हो गया, कतरे कतरे में फैली इश्क की एक बूंद, कतरे कतरे में फैली जमाना इश्क हो गया। जिस्म की कढ़ाई में इश्क का पानी खौल रहा, इस जिस्म की कढ़ाई में इश्क का पानी खौल रहा, सुध विसर गई अब कैसे दिल हार्ड मास में कैद रहे, सुध विसर गई अब कैसे दिल हार्ड मास में कैद रहे। पल्लू ही फटके उड़ गया, पल्लू ही फटके उड़ गया, पीर देने की जहमत कर गया, और इश्क की एक बूंद कायनात में हलचल मचा गई, और इश्क की एक बूंद कायनात में हलचल मचा गई, कायनात में हलचल मचा गई, हलचल मचा गई। अब मैं आपको एक कविता तरन्नुम में सुनाती हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। इस सफ़र में तलाश जारी है।

रस्में उल्फत निभाना मुश्किल है, रस्में उल्फत निभाना मुश्किल है। इसके एहसास की तराश जारी है,

इस सफर में तलाश जारी है, इस सफर में तलाश जारी है। अब मैं आपको, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो वो श्राद्ध के ऊपर, पितरों का श्राद्ध चल रहा है तो उसके ऊपर आपको एक कविता सुनाती हूँ कि श्राद्ध क्या है। असल में श्राद्ध ये है, तो सुनिए, श्राद्ध के ऊपर अपने पितरों को याद करते हुए हम श्राद्ध की एक कविता बोलते हैं। यही तो श्राद्ध है, यही तो श्राद्ध है।

0: तस्वीरों के समक्ष मस्तक श्रद्धा से झुक जाए, आदर दिखाए, उनकी यादें हमें उदास कर जाएं, अपनी कमी का एहसास दिलाएं, यही तो श्राद्ध है, यही तो श्राद्ध है। हर दिन की गतिविधियां जब पल पल संग उनको पाएं, हर दिन की गतिविधियां जब पल पल संग उनको पाएं, कहीं जो कोई अड़चन आए उनके हाथ पकड़ने का आभास दिलाएं, यही तो श्राद्ध है, यही तो श्राद्ध है। मन में उफनते तूफान जब उनकी दिखाई राह पर चलना चाहें, मन में उफनते तूफान जब उनकी दिखाई राह पर चलना चाहें, उंगली पकड़ वह सही राह पर ले जाएं, उंगली पकड़ वह सही राह पर ले जाएं, उनकी अनुपस्थिति से अश्रु धारा रुक ना पाए, उनकी अनुपस्थिति से अश्रु धारा रुक ना पाए, यही तो श्राद्ध है, यही तो श्राद्ध है। अपने पितरों के गुण संस्कार, अपने पितरों के गुण संस्कार अपनी अगली पीढ़ी को समझाएं, उनके दान धर्म के कर्मों के गुण अनुसरण करने का पाठ पढ़ाएं, यही तो श्राद्ध है, यही तो श्राद्ध है। परिवार के संस्कारों को नित्य, परिवार के संस्कारों को नित्य श्रद्धा से सिर निवाकर समझें, उनके आशीर्वचनों का अनुकरण कर उनको समक्ष पा आशीष पाएं, उनको समक्ष पा आशीष पाएं, यही तो असली श्राद्ध है, यही तो असली श्राद्ध है, यही तो असली श्राद्ध है।
1: विविधा प्रोग्राम जो हुणे तुसे सुन रहे सी बिना विजदा काव्य पाठ, असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण तुसे सुनोगे प्रायोजित प्रोग्राम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस कर

करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वह दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं।

देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में यह देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है, जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं, तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है, जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है। एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है, जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदि हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, दिल की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज ये है दोस्तों, कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार, अपनापन मिल रहा है, तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए, तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड प्यार दे और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे, ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो, तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई

0: 8051522703 9। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: हुण तुसी सुन रहे सी प्रायोजित प्रोग्राम लम्हे। असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण सुनते हैं आलिशा चिनॉय की आवाज़ गीत।

श्रोतियो नमस्कार। अज दे इस प्रोग्राम च असी गल करांगे एक अजेही पहल बारे जिसने देश दे नौजवानों नू सिर्फ नौकरी लब्बन वालियां दी थां नौकरियां पैदा करन वाले उद्यमियां वजों सोचण लई उत्साहित कीता। जी हां, अज गल करांगे स्टार्टअप इंडिया बारे। आखिर स्टार्टअप इंडिया की है, इस दा मकसद की है, कोई नौजवान अपना स्टार्टअप किवें शुरू कर सकता है, सरकारी सहायता किहड़े रूप च मिल सकती है अते सब तो महत्वपूर्ण एक सफल स्टार्टअप लई किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रख्या जावे। आओ यह सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं स्टार्टअप इंडिया है की। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका ऐलान 2015 च किया गया। इसका उद्देश देश विच स्टार्टअप अते उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप लई अनुकूल माहौल तैयार करना, नवियां खोजां नूं उत्साहित करना अते नौजवानां नूं अपने कारोबारी विचारां नूं अमल च लियाउण लई सहायता देना है। इस पहल तहत योग स्टार्टअप्स लई मानता, रजिस्ट्रेशन प्रक्रियावां विच सहूलत, फंडिंग नाल जुड़ियां बहुत सारियां पहलां, मार्गदर्शन अते होर सहायता दे प्रबंध कीते गए ने। पर इत्थे एक गल समझना जरूरी है, क्योंकि हर नवा कारोबार अपने आप च स्टार्टअप इंडिया दा मानता प्राप्त स्टार्टअप नहीं बन सकता, तां फिर ए देखना जरूरी है कि किस नूं स्टार्टअप इंडिया दे तहत स्टार्टअप दा नां दित्ता जावेगा। इस लई निर्धारित योग्यता मापदंडां नूं पूरा करना अते DPIIT अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तो मानता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। हुण सवाल है स्टार्टअप दी लोड़ क्यों है। अज दा समा तेजी नाल बदल रही तकनोलॉजी दा समा है। मोबाइल एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी अनेक खेत्रां च नवे विचारां लई मौके पैदा करती है। अज इस गलबात दे तहत असी अजेहे स्टार्टअप्स दी गल करांगे जिन्हां च कुछ ना कुछ इनोवेशन लुकी होवेगी अते ओहो इनोवेशन जिथे चाह उथे राह वाली गल तो निकल के आई होवेगी। एक छोटा जिहा विचार जेकर किसे असल समस्या दा हल करदा है तां अगे चल के एक वड्डे कारोबार दा रूप लै सकदा है। मिसाल वजों जेकर कोई नौजवान किसानां लई मंडी भा, मौसम, खेती सलाह जां सप्लाई चेन नाल जुड़ी कोई नवी डिजिटल सेवा तैयार करदा है तां इह एग्रीटेक स्टार्टअप बन सकदा है। इसी तरह सेहत सेवावां, सिक्ख्या, पिंडां दीआं समस्यावां, पाणी दी बचत करना, कचरा प्रबंधन करना, नवियाउण योग ऊर्जा नाल जुड़िया हर हल भी उद्यम यानी कि स्टार्टअप दा रूप लै सकदा है। हुण गल करिए एक स्टार्टअप शुरू करन दे पहले कदम दी। पहला कदम है समस्या दी पछाण। अपने आप तो पुछो जिहड़ी समस्या मैं देख रहा है कि ओह होर लोकां नूं भी प्रभावित करदी है, कि लोक इस समस्या दे हल लई पैसा खर्चण लई तैयार ने। मेरे वल्लों सुझाया गया हल मौजूदा हल जिहड़े ने उन्हां तों किवें वक्खरा हो सकदा है। इन्हां सवालां दे जवाब मिलण तों बाद आउंदा है बिजनेस मॉडल अर्थात तुहाडा कारोबार कमाई किवें करेगा। इस तों बाद मार्केट रिसर्च, प्रोटोटाइप जां मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसनूं आम तौर ते MVP कहा जांदा है तैयार कीता जांदा है। फिर अपने उत्पाद जां सेवा नूं छोटे पद्धर ते अजमाया जा सकदा है अते गाहकां तों

फीडबैक भी प्राप्त की जा सकती है। स्टार्टअप इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण गल है DPIIT रिकॉग्निशन। जेकर कोई एक इकाई स्टार्टअप इंडिया के निर्धारित मापदंड पूरे करती है तो वह DPIIT तो स्टार्टअप रिकॉग्निशन अर्जी दे सकती है। मानता प्राप्त करने नाल योग स्टार्टअप्स नू वख वख सरकारी सहूलतां अते मिलन वालियां होर सुविधावां तक पहुंच मिल सकती है। पर स्रोतियो इत्थे ए याद रखना जरूरी है कि हर सरकारी योजना लई वक्री एलिजिबिलिटी ते शर्तां हो सकदियां ने। इसलिए अर्जी देने तो पहला सरकारी पोर्टल ते मौजूदा नियमां अते योग्यता दी जांच करनी बहुत जरूरी है।

0: जन सेवा तो देश सेवा तक इस लड़ी दे तहत हुणे तुसी सुन रहे सी स्टार्टअप इंडिया ते विशेष प्रोग्राम असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामले ने विचकार आज नवी दिल्ली में दुवली गलबात तो बाद दोहां देशों विचकार पांच समझौतों पर दस्तखत किए गए ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने चोण कमिशन के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार और तबादलों बदले नकदी मामले की CBI जांच के हुक्म दिए ने। अमले जनतक शिकायतों ते पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पेंशनरां दे जीवन नूं सरल बनाउण अते उन्हां दी भलाई लई सरकार दी वचनबद्धता नूं दोहराया है। 2026 दा मेडिसन नोबल पुरस्कार 3 विज्ञानियां कार्ल डाइसरोथ, पीटर हैगमैन अते जॉर्ज नागल नूं सांझे तौर ते दित्ता गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामले ने विचकार अज नवी दिल्ली में दुवली गलबात तो बाद दोहां देशों विचकार पांच समझौतों पर दस्तखत किए गए। समझौतों में प्रवास, नौजवान पेशेवरां दे आदान प्रदान, आवाजाई, विज्ञान अते तकनालोजी, नवीनता ते उद्यमता वर्गे खेत्र शामिल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीयन मुक्त व्यापार एसोसीएशन EFTA व्यापार अते आर्थिक भाईवाली समझौता दोहां देशों विचकार व्यापार ते निवेश नूं वधाएगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोवें देश खेतीबाड़ी उत्पादा, दवा खेत्र, टैक्सटाइल और इंजीनियरिंग समान व्यापार का विस्थार करेंगे। नाल ही बायोटेक्नोलॉजी, बैंकिंग, बीमा और फूड प्रोसैसिंग वर्गे खेत्रों में निवेश वधाएंगे। दोवें देश रक्षा और परमाणु ऊर्जा में सहयोग वधाने लई भी सहमत हुए। राष्ट्रपति गी पामले जो कि भारत के 3 दिन दौरे पर ने, दा अज नवी दिल्ली में रस्मी तौर पर स्वागत किया गया। उन्होंने राजघाट का दौरा किया, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 हाई कोर्टा के चीफ जस्टिस नूं सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून ते न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दविंदर कुमार उपाध्याय ते तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह नूं सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया है। जुडिशियल ऑफिसर गुरविंदर पाल सिंह नूं दिल्ली हाई कोर्ट में वाधू जज वजों भी नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने चोण कमिशन के फार्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाले बेंच ने इसकी पुष्टि की है। अदालत ने यह तय करने बदलाव से संबंधित दस्तावेज तलब किए ने कि यह बदलाव किसने किए ने। यह मामला वोटर सूचियों की विशेष तीबर सोध SIR संबंधित है। जनहित अर्जी में फार्म 6 बिनेकार के पूर्व से पिछली SIR संबंधित वेरवे प्रदान करने की जरूरत से सवाल उठाए गए ने। पटीशन विच चोण कमिशन के सॉफ्टवेयर विच बदलाव का भी इल्जाम लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले विच नोटिस जारी किए ने अते इसनूं इसे मुद्दे ते एक होर पटीशन नाल जोड़िया है। चोण कमिशन ने पहला कहा सी कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 के बिहार SIR मामले विच फार्म 6 के घोषणा पत्र नूं मंजूरी दी सी। सुप्रीम कोर्ट ने हुण स्पष्ट किया है कि उसने फार्म 6 विच बदलाव नूं प्रवानगी नहीं दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र विच वोटर

0: हल्की बारिश भी हो सकती है, और फिर 7 और 8 तारीख में थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और उसके बाद फिर 9 तारीख के बाद फिर से एक बार मौसम ठीक होगा। तो इसके चलते टेम्परेचर भी कम होंगे, खासकर न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भी थोड़ी सी कमी आएगी।
1: अंत विच चुनावी खबरां ते नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते स्विट्जरलैंड दे राष्ट्रपति गी पामलिन विचकार अज नवीं दिल्ली विच दुवल्ली गल्लबात तों बाद दोहां देशां विचकार 5 समझौतियां ते दस्तखत कीते गए ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कीता कि उसने चोण कमिशन दे फॉर्म 6 विच किसी भी बदलाव नूं मंजूरी नहीं दित्ती ते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब दे मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार ते तबादलियां बदले नकदी मामले की CBI जांच दे हुक्म दित्ते ने। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा। नमस्कार।
2: असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण सुनते हैं एक गीत।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 8:45 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਅਤੇ 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमेरिका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना, 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता, क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
3: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
4: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
3: And Department of Science and Technology, our DST.
1: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक

0: समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में पांचवें कॉटेल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक आज उन्होंने कहा कि एआई ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा एआई अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
3: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
4: आज MOUs में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन

0: मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल।
1: वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 पीएचडी स्कॉलर्स को पीएचडी का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
2: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
4: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
2: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
5: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं नाम के प्रोटीन में महत्वपूर्ण और जॉर्ज नागेल।
0: समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक में डिजिटल पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर भारत और स्विट्जरलैंड परिवहन सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली तकनीक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India

0: जनाब यही है वो जगह सिटी पॉइंट कैफे।
1: सारे एग्जिट पॉइंट कवर कर दियो, कोई भी अंदरों बाहर या बाहरों अंदर नहीं जाएगा। ओके
0: ओके सर ओके। कौन है भाई, कौन है थे? अब ब्रेकफास्ट 8 बजे तो पहले नहीं मिलेगा जी, लिख के लाया।
2: ओए आके दस किथे लिखया?
0: ओ साहब जी, बड़े साहब जी, साढ़े छोटे जे ढाबे थे।
2: तेरा है कैफे?
0: हाँ जी।
1: नाम की तरह
0: की है साहब जी, कोई गड़बड़ होगी?
1: नहीं कोई गड़बड़ता नहीं, बड़ी भारी गड़बड़ होगी काका। 3 लोग इतों की चाह पी के गए हमेशा ले, अखा बंद कर गए।

0: हर पैकेट च एक वड्डा जिहा सफेद लड्डू एक छोटा सफेद लड्डू हुंदा सी जनाब। हाँ, वड्डा खान नाल थोड़ा जिहा नशा हुंदा सी, छोटा जिहड़ा आ वह नशा तारन लई हुंदा सी जनाब। यही मैनू पता जी। ते एक गल होर जनाब, छोटा जिहड़ा ना घड़ी देख के 5 घंटे बाद खाना हुंदा सी जनाब। वो जिहड़ा लड्डू है ना जनाब, वो कॉलेज स्कूल के बच्चों नूं नहीं बेचते सी, खास किस्म के लोगों नूं ही दिंदे सी। पहला तो मैनू लगा जनाब कि कोई भंग भुंग का लड्डू होना, पर बाद च पता लगा भी ये तो एक नवा जिहा ड्रग है जनाब, बड़ा तेज नशा करता जनाब, लोग आदि हो जाते हैं। जिन्हें एक बार ले लिया वो इस तो बच नहीं सकया जनाब। मैं कई बार मना भी किया पर
1: फिर
0: जनाब फिर प्रोफेसर साहब ने मैनू पुलिस तो फड़ाने की धमकी दी। डर दे मारे मैं वह काम करता रहा जनाब, पर उन्हें तिना के मरण की खबर देख के मैं सच्ची बहुत डर गया जनाब। बिना उन्हें दसे मैं अज भज गया जी।
2: तू जानता है तिना?
0: हाँ जनाब मैं जानता, वो प्रोफेसर के दोस्त से, उन्होंने प्रोफेसर ने ड्रग की आदत लाई सी जी, पर शायद जनाब पैसे वंडन बटे या फिर होर किसी गल से सारे लड़ पे। मैं फोन से सारा झगड़ा सुनया सी जनाब।
2: ओके सानू गल दस के प्रोफेसर की कोई होर खास आदत हरकत किसी ने मिलता जुलता हो, कोई जगह जिथे जाता हो, रहा कि
0: साहब ये तो नहीं पता भी वह रहा कि है, पर यह जरूर है भी राति 11:55 तो मेरे को फोन पर मैसेज आता सी, जे सौंदा होया समाइली होवे तो मतलब है कोई काम नहीं है, जे समाइली बनी होवे तो मतलब है कि 10 मिनट बाद बाहर आ जाओ तो सफेद लड्डू के पैकेट ले लो। वो अपनी गड्डी बैठा हुंदा सी, पैकेट दिंदा सी, नाल ही उस जगह के लोगों की लिस्ट हुंदी सी जिथे सप्लाई पहुँचानी हुंदी है। जनाब मैं साधारण कैफे के पैकेट च समाल पहुँचांदा सी, ते नाल ही पैसे वाली रसीद पाउण दा ऑर्डर हुंदा सी, ताकि जे पुलिस रोक भी लवे तो यह कैफे का ऑर्डर लगे। तो हाँ, हर सप्लाई का एक कोडवर्ड हुंदा सी जनाब, सप्लाई लैन वाला गाहक जब तक वह कोडवर्ड नहीं बोलता तद तक उन्हें पैकेट नहीं दिंदा सी जनाब।
2: अच्छा तू क्या होगा गड्डी चाहुंदा सी, किहड़ी गड्डी सी, कोई कलर कोई मॉडल कुछ याद है तैनूं?
0: जनाब गड्डी हर बार ना एक वक्री हुंदी सी, पर रंग ते नंबर इक्को ही हुंदा सी।
2: नंबर?
0: जी सर, उहदे कोल शायद 3-4 गड्डियां है जी, होर भी हो सकदियां। एक सफेद रंग ते हर गड्डी दे आखरी 3 नंबर 567 हुंदे सी जी।
2: 567 567 पागल पागल राजीव कत्थे तू कत्थे तू पागल, फिर मेरी जिंदगी जा गया।
0: जनाब मैं सब कुछ सच सच दसदा जी, मेरी कोई गलती नहीं जी, मैनू छड़ दिओ जनाब, मैं बेनती करदा जी मैनू छड़ दिओ।
2: राजीव इज इट यू राजीव? ये रास्ता तो तेरे वल मुड़ता लग रहा है, बट वाई क्यों 15 साल बाद तू मेरी जिंदगी च फिर आ गया, क्यों? मैं तो लगा सी साडी आखिरी मुलाकात सी, है कित्थे तू कित्थे है?
3: राजीव तेरी प्रॉब्लम की है, पागल हो गया तू?
4: कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी, बस मैं हूं इस बैंक की नौकरी नहीं करनी। मैं केमिस्ट्री में टॉप किया दलवीर, मैं रिसर्च करनी है, दुनिया ने कुछ देना चाहना मैं। देख देख मेरे को इस वध्दे प्रदूषण नु कट करके उसके इफेक्ट नु मिनिमाइज करने का फार्मूला है, मैं फार्मूला प्रूव करना है दलवीर।
3: किसे नु नहीं विश्वास तेरे फार्मूले ते, किसे नु नहीं विश्वास तेरी काबिलियत ते, तेनु ऐसा के गल समझ नहीं आई।
4: एक दिन होगा, एक दिन दुनिया जानेगी मेरे फार्मूले, मेरी काबिलियत का लोहा मनेगी, मनना पवेगा, मैं मनवा के ही रहूंगा। तू जरा सोच दलवीर, मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार कितने होनी सी ते कितने पहुंच गई है, गड्डियां दा धुआं, कंस्ट्रक्शन दा गंध, इंडस्ट्री डेवलपमेंट नाल वधदा पोल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग नाल होण वाला प्रदूषण, इस सब दा इलाज मेरे कोल है। उसका मिनी डेमो तू तू देख चुका है?
5: हाँ मैं देख चुका हूँ, पता है मैंने, बोल।
4: तेनू भी तो पता है कि साढ़े आस पास फैलन वाले प्यूटेंट्स जे किसी दिन एक खास रेशो विच मिल जाए तो साइनाइड नालों भी वध जहरीले हो सकते हैं। मैं डॉक्टर राजीव शर्मा जिसके कोल उसका एंटीडोट है, तू तो उसका नाम रखा सी सफेद लड्डू।

0: मैं बचा सकदा सब नु पोल्यूशन दे खतरे तो। मैं तू देखिया ता है, तू देखिया ता है मेरा एक्सपेरिमेंट, उस दा प्रोटोटाइप, वो सफेद लड्डू
1: देखिया, चंगी तरह देखिया। बैंक तो लोन लिया सी, तेरे एक्सपेरिमेंट च वड़ गया, फिर झूठ बोल के अपनी गर्लफ्रेंड दे गहने लए ते वेचते। दुनिया तो कमीना बॉयफ्रेंड आ तू, तूने अपने पागलपन दे चक्कर च अपनी गर्लफ्रेंड नु चूना लाया। वो भी देख, मेरा फेवरेट नीले रंग का DLC 567 मोटरसाइकिल जो तू गहने रख के लाले को 10,000 लिया सी, तू भी देखे। देख की तो कह रहा, बचपन तू आज तक तेरा पागलपन देख रहा, देख रहा, देखता जा रहा।
0: ठीक है, 567 नंबर वाली गड्डियां दी लाइन लगा लगा तेरे घर दे सामने।
1: ओहो
0: वेख, मैनू अपना एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने पेश करन दे। मैनू कोई वड्डी कंपनी मौका देवे जा कितों इन्ना फंड मिल जावे कि मैं खुद इस नू दुनिया के सामने पेश कर सकां, लोकां दी जान नू बचाना चाहुंदा हां। मैं विजनरी हां, मैं साइंटिस्ट हां, मैं पागल नहीं हां, मैं सनकी नहीं हां।
1: वाह पागल, और कितना दे हुंदे पागल?
0: पागल ते सनकी लोकां दे दोस्त नहीं हुंदे, मैं तां हां।
1: मैनू नहीं लगदा तू दोस्त है किसे दा।
2: देख रजीव, सुधर जा यार, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच। लोग अपने पैरों से कुहाड़ी मारते ना, तो क्यों क्यों कुहाड़ी से पैर मारना फिरता?
1: देख मेरे वाल, देख,
2: गोल्ड मेडलिस्ट सी मैं लिटरेचर च, प्रोफेसर बनना चाहता सी, नहीं बन सकिया। इट्स ओके, इट्स फाइन, जिंदगी खत्म नहीं हो गई, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, खुश है, रस्ते लपने पैंदे जीण दे। मैं फालतू की किसी एक जिद च किसी एक सुपने नाल बज के अपनी जिंदगी खराब नहीं की थी।
0: तलवीर, तेरा मैनू नहीं पता, पर मैं आ लेजर बुक, आ ड्राफ्ट, आ अकाउंट्स, इन्हें मत्था नहीं मार सकता।
1: ओ लैब वाले तेनू चलदे नहीं, बैंक की नौकरी तू करनी नहीं, सुधा पागलपन किन्ने दिन चलेगा, तेरा की होएगा यार, तेरा मैं नहीं पता।
0: तू है ना मेरा दोस्त, मेरा भरा, मेरा गोद लिया पिता, याद है असी वादा कीता सी, सुख विच दुख विच छां विच धुप विच साथ नहीं छड़ांगे यार, इस जन्म तक कदे नहीं।
1: बकवास बंद कर, बचपन दी गल सी, आज हकीकत दा सामना करन दा समा आ गया है। मेरा विवाह होने वाला है यार, जिम्मेदारियां वधन वालियां ने, तू समझदा क्यों नहीं?
0: तां
2: मैं पुलिस को शिफ्ट करने वाला हूँ भाई, मैं उठे मेरे क्वार्टर मिल जाना।
0: ते मैं उठे नहीं रह सकता, यही कहना चाहना ना तू?
1: हाँ यही कहना चाहना, जे तेरे पल्ले पै जावे तां
0: तेरे बिना मेरा की होवेगा, मैनू तेरे नाल रहन दी आदत पै गई है दलवीर।
1: आदत छड़नी पेगी यार, खुद सुट दे अपने एक्सपेरिमेंट, छड़ दे दुनिया दे वधदे पोल्यूशन नू, ओदी वजह नाल खंघ दे बीमार हुंदे लोकां दी गिणती नू तू ठेका लिया यार, दुनिया नू बचाउण दा, सब नू पोल्यूशन तो मुक्त करन दा। दुनिया नू तेरे पागलपन नाल कोई लेना देना नहीं, तेरे खाने च क्यों नहीं बैठती गल? ते हाँ, बैंक दी नौकरी ना छड्डी, नहीं तो सड़क ते आ जाएगा। देख भाई, सीधी स्पष्ट गल, मैं तेरा खर्चा हुण नहीं चल सकता, जदों तेरा दिमाग टिकाने आ जावे मैनू फोन करके दस दई, नहीं तो भुल जाए कि दलवीर है कोई, दलवीर सी कोई, समझे?
0: सुख विच दुख विच छां विच धुप विच साथ नहीं छड़ांगे यार, इस जन्म तक कदे नहीं, सुख विच दुख विच छां विच धुप विच साथ नहीं छड़ांगे यार, इस जन्म तक कदे नहीं, इस जन्म तक कदे नहीं। एक दिन दुनिया जानेगी मेरे इस एक्सपेरिमेंट में, मेरी काबिलियत का लोहा मनेगी, मनना पड़ेगा।

0: राजीव, तू मैनू कित्थे ले आया यार? कित्थे है तू? कित्थे है?
1: हेलो सर।
0: हाँ आरती।
1: जी सर।
0: आरती एक एड्रेस भेज रहे हैं इस पते थे, जो भी 45 साल दिया।

करना संबंधित कथित भ्रष्टाचार अते तबादलियां बदले नकदी मामले दी सीबीआई जांच दे हुकम दित्ते ने। अमले जनतक शिकायतां ते पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशनरां दे जीवन नूं सरल बनाउण अते उनां दी भलाई लई सरकार दी वचनबद्धता नूं दोहराया है। 2026 दा मेडिसिन नोबल पुरस्कार तीन विज्ञानिका कार्ल डेसरोथ, पीटर हैगेमैन अते जॉर्ज नागिन नूं सांझे तौर ते दित्ता गया है। पंजाब कैबिनेट वालों अज रणजीतगढ़ डिवेलपमेंट अथॉरिटी बिल 2026 मंजूर। औरतों बारे राष्ट्रीय कमीशन ने ऐप आधारित अते डिजिटल ट्रांसपोर्ट सेवावां विच औरतों की सुरक्षा लई नवे दिशा निर्देश जारी किए। कमीशन ने दे चेयरपर्सन विजय रहाटकर ने सारे राज्यों अते कथित केंद्र शासित प्रदेशों के मुख सकत्तरां नूं इन्हां दिशा निर्देशों नूं लागू करन लई जरूरी कदम चुकन लई कहा है। जलंधर के नेड़े बंगा फगवाड़ा शाहराह ते

0: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: बहुत बढ़िया
0: और अब एक गज़ल मैं तहत में पढ़ना चाहूँगी
1: जी।
0: कि मेरे जीवन की हर एक सांस को महका गया कोई,
1: वाह
0: मेरे जीवन की हर एक सांस को महका गया कोई,
1: कोई
0: कि खुशबू बन के मेरी जिंदगी पर छा गया
1: छाया, वाह
0: कोई।
1: अच्छा है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। और शेर है कि लगाते थे जो ठोकर चूमते हैं अब वो कदमों को,
1: हाँ
0: लगाते थे जो ठोकर
1: ठोकर।
0: चूमते हैं अब वो कदमों को, कि संगे राह को रस्मे वफा सिखला गया कोई,
1: वाह
0: कि
1: वाह
0: संगे राह को रस्मे वफा सिखला गया कोई। और डॉक्टर साहब शेर देखिएगा
1: जी।
0: कि कदूरत और नफरत मेरे दिल से हो गई रुखसत, कदूरत और नफरत मेरे दिल से हो गई रुखसत, मेरी रग रग में उल्फत का लहू दौड़ा गया
1: वही
0: कोई।
1: वाह वाह
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अश्विनी जी ये शेर देखिएगा कि अगर सच्चे हों जज्बे तो बड़ी तासीर रखते हैं, अगर सच्चे हों जज्बे तो बड़ी तासीर
1: तासीर
0: रखते
1: रखते
0: हैं,
1: हैं।
0: हमारे दिल ने जब जब भी पुकारा आ
1: आ
0: गया
1: गया कोई,
0: कोई,
1: वाह वाह बहुत
0: हमारे
1: अच्छे
0: दिल
1: बहुत
0: ने जब
1: अच्छे
0: जब भी पुकारा आ गया कोई। और गजल का मकता अर्ज है,
1: जी।
0: गुमा होता है तन्हाई में अक्सर ये मुझे खुशबू, गुमा होता है तन्हाई में अक्सर ये मुझे खुशबू, मेरे हाथों के कंगन धीरे से मह
1: आ
0: खनका गया
1: गया कोई,
0: कोई,
1: अच्छा है
0: मेरे हाथों के कंगन धीरे से खनका
1: खनका गया
0: गया
1: कोई, बहुत
0: कोई।
1: अच्छी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: तो ये थी कुसुम खुशबू जी जो अपना कलाम पेश कर रही थी। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पठानकोट से हमारे बीच में पहुंचे कवि अश्विनी मानम जी को कि वो आए और अपनी रचनाओं से हमें रूबरू करवाएं। अश्विनी मानव जी
2: धन्यवाद डॉक्टर मनु जी। एक कविता पेश करता हूँ,
0: जी स्वागत है
2: दर्द
0: जी
2: आया इसमें एक औरत का।
1: जी
2: सुबह तुम आराम की नींद लेते हो, सुबह तुम आराम की नींद लेते हो, और मैं सबके लिए नींद से मुख मोड़ लेती हूँ।
0: क्या बात है क्या बात
2: और मैं सबके लिए नींद से मुख मोड़ लेती हूँ, ना चाहते हुए भी उदास मन से सबके उठने से पहले बिस्तर छोड़ देती हूँ।
0: सच्ची
2: उदास
0: बात
2: मन से उठने से पहले बिस्तर छोड़ देती हूँ, पहले आप नहाना, फिर बच्चों को उठाना, उन्हें नहलाना, स्कूल के लिए तैयार करना,
1: है।
2: नाश्ता।

0: कराना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाती हूँ। इसी बागम बाग में सुबह चाय पीने की ललक को अब कहाँ पूरी कर पाती हूँ। इसी बागम बाग में इसी चाय पीने की आदत को कहाँ पूरा कर पाती हूँ। वहाँ से आकर सबके लिए चाय बनाना, तुम्हारा नाश्ता, कपड़े इस्त्री, तुम्हारा टिफ़न, सुबह उठते ही ना जाने क्या क्या करती हूँ। सुबह उठते ही ना जाने क्या क्या करती हूँ। जरा सांस भी नहीं ले पाती हूँ, जैसे कोई फिरकी घूमती हो कुछ उसी तरह घूम जाती हूँ। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद माँ बाबूजी के लिए उनका मनचाहा नाश्ता बनाना, कमरे में ही उनको उनके आगे परोसना, उनको देने के बाद खुद खाना। नाश्ता कर बाबूजी तो ऐनक आंखों पर टिका पार्क में मित्रों संग निकल जाते हैं। और माँ जी टीवी के सामने बैठ अध्यात्म चैनल लगा भजन सुनते धीरे धीरे खुद भी गुनगुनाते हैं।
1: क्या सुंदर है।
0: फिर 2-3 घंटे बाद बाबूजी का घर वापस आना, इसी बीच सबके लिए दोपहर का खाना तैयार करना, सब पर समय पर खिलाना। दोपहर तक मेरी जान ही निकल जाती है, अभी दो पल लेट भी नहीं पाती की बच्चों के स्कूल की बस आ जाती है।
1: क्या सुंदर चित्रण,
2: क्या बात है।
0: बच्चों के स्कूल की बस आ जाती है, उनका स्कूल से आना, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें ट्यूशन पर छोड़ने जाना, माँ बाबूजी को समय पर दवाई खिलाना, शाम की चाय, कभी कभार बाबूजी का किसी चीज़ के लिए ज़ोर से चिल्लाना, मेरा भाग कर जाना, उन्हें वह चीज़ देकर आना। पता है आजकल शायद मेरा बीपी भी बढ़ने लगा है। कभी कभार हल्का सा चक्कर भी आ जाता है। कहीं गिर ना जाऊं, मन डरने सा लगा है। पूरा दिन इसी हार्ड मास के पुतले को पूरा नचाती हूँ। रसोई में भी ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती। कभी कभार खाना भी स्टूल पर बैठकर बनाती हूँ।
1: वास्तविक चित्रण, क्या बात।
0: कभी कभार खाना भी स्टूल पर बैठकर बनाती हूँ। पता है औरत सूर्य उगने से पहले रात गहराने तक कितना मरती है। पता है औरत सूर्य के उगने से पहले रात गहराने तक कितना मरती है। और तुमने आज धीरे से कह दिया, घर में रहने वाली औरतें तो दिन भर कुछ भी नहीं करती।
1: क्या बात है,
2: बहुत बढ़िया, बहुत
1: सुंदर।
0: और तुमने धीरे से कह दिया, घर में रहने वाली औरतें तो दिन भर कुछ भी नहीं करती हैं।
3: अब मैं लुधियाना से हमारे बीच में पहुंची कवित्री जसप्रीत कौर फलक जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी एक रचना प्रस्तुत करे। जसप्रीत कौर फलक जी,
4: कविता का शीर्षक है तुम मेरे हो।
3: जी।
4: जब मेरी नींद अधूरी हो, जब खुद से खुद की दूरी हो, जब कहना बहुत जरूरी हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। उस वक्त कहो तुम मेरे हो। सावन का पानी जलता हो, जब शाम का सूरज ढलता हो, जब मौसम रंग बदलता हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो,
3: मेरे हो।
4: जब दिल मेरा घबराता हो, जब कुछ भी समझ ना आता हो, जब तिमिर भी बढ़ता जाता हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। प्रेम में भीगा तनमन हो, सांसों का महका मधुवन हो, जब यादों का आलिंगन हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। मन की धरा अकुलाई हो, जब रुत मिलन की आई हो, जब चहूं और तन्हाई हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो।
2: अच्छा है, बहुत खूब।
4: जब धैर्य का बंधन टूटे तो, जब समय भी मुझसे रूठे तो, जब

0: समय भी मुझसे रूठे तो जब सारी दुनिया पूछे तो उस वक्त कहो तुम मेरे हो। जब अंतर मन भी रोता हो, जब अंतर मन भी रोता हो, जब अनचाहा कुछ होता हो, जब मेरा धैर्य भी खोता हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। जब दुख का बादल छाया हो, जब दुख का बादल छाया हो, जब विरहा का गहरा साया हो, उम्मीद का गुल मुरझाया हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो।
1: क्या
0: बेताब से दिल की धड़कन हो, बेताब से दिल की धड़कन हो, जब कदम कदम पे उलझन हो, जब सारी दुनिया दुश्मन हो, उस वक्त कहो
2: तुम मेरे हो। अच्छा है।
0: जब समय भी करता साजिश हो, जब समय भी करता साजिश हो, जब दिल में दबी ख्वाहिश हो, जब कुछ कहने पे बंदिश हो, उस वक्त कहो तुम मेरे हो। ना रास्ता हो ना मंजिल हो, ना रास्ता हो ना मंजिल हो, जब सहमा सहमा सा दिल हो, जब कुछ भी कहना मुश्किल हो, उस वक्त कहो
2: तुम मेरे हो।
0: उस वक्त कहो तुम मेरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कविता का शीर्षक है इस बार जब मिलना। इस बार जब मिलना तो टूट कर मिलना, इस बार जब मिलना तो टूट कर मिलना, ये आखिरी मुलाकात है ये सोच कर मिलना।
2: अच्छा है,
1: क्या बात है।
0: फिर ये जिंदगी वफा करे ना करे, वक्त हमारे हक में दुआ करे ना करे, फिर शायद कभी मुलाकात का सबब बने ना बने, मोहब्बत का खुदा कभी हमारी दुआ सुने ना सुने। इस बार जब मिलना टूट कर मिलना, मोहब्बत के सफर में दुश्वारियां भी हैं, मजबूरियां भी, नजदीकियां भी हैं, दूरियां भी, सुबह दम गिरी शबनम भी, ढलती शाम के साए भी, ये जो दिल के रिश्ते हैं कुछ अपने हैं कुछ पराए भी, ये जो अधूरेपन की तड़प है ये मोहब्बत का सिला नहीं है।
2: वाह।
0: ये सोचा था जो जो चाहा था वो मिला नहीं है। ढलती उम्र की शाम तुम्हारे नाम,
2: तुम्हारे नाम।
0: इस बार जब मिलना टूट कर मिलना, इस बार जब मिलना टूट कर मिलना।
2: बहुत बहुत
0: शुक्रिया जी।
3: अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनु मेहरबान जी को। ये शिरोमणी उर्दू साहित्यकार जनाब राजेंद्र नाथ रहबर साहब के प्रिय शिष्य हैं। बहुत सुंदर रचनाएं कहते हैं और इनकी रचनाएं देश विदेश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में शाया हो चुकी हैं। तो अब मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें और हम आनंद ले सकें।
2: शुक्रिया कुसुम जी। एक गज़ल के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ।
3: स्वागत है जी।
2: कि दिल का हर राज सलीके से सुनाता है मुझे, दिल का हर राज सलीके से सुनाता है मुझे, अपने ख्वाबों में कोई रोज बुलाता है मुझे।
3: क्या बात है, क्या बात।
2: अपने ख्वाबों में कोई रोज बुलाता है मुझे, और रेत के हम जो बनाते थे घरों दे अक्सर।
3: क्या बात है।
2: रेत के हम जो बनाते थे घरों दे अक्सर, याद बचपन के दिनों की वो दिलाता है मुझे।
3: क्या बात है, क्या
2: याद बचपन के दिनों की वो दिलाता है मुझे, और नाम किसका कहो मेरे मुकद्दर में लिखा, नाम किसका कहो मेरे मुकद्दर में लिखा, अपने हाथों की लकीरें वो दिखाता है मुझे।
3: बहुत बढ़िया।
2: अपने हाथों की लकीरें वो दिखाता है मुझे, और मेहरबान इसलिए रहता हूँ मस्ती में सदा।
3: क्या बात।
2: मेहरबान इसलिए रहता हूँ मस्ती में सदा, मस्त आंखों से कोई रोज पिलाता है मुझे, मस्त आंखों से कोई रोज बुलाता है मुझे, और एक

0: गजल के चंद अशार कुसुम जी पेश कर रहा हूँ।
1: स्वागत है जी।
0: है कौन शख्स किसका इसे इंतजार है, है कौन शख्स किसका इसे इंतजार है, बैठा हुआ ये कौन सरे रह गुजार है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: बैठा हुआ ये कौन सरे रह गुजार है, और हंसने को हंस रहे हैं दिखावे की हम हंसी। हंसने को हंस रहे हैं दिखावे की हम हंसी, दामन हमारे दिल का मगर तार तार है। दामन हमारे दिल का मगर तार तार है, और गुलशन में फूल खिल गए कलियां चटक गई।
1: आए क्या सुंदर मिसरा है।
0: गुलशन में फूल खिल गए कलियां चटक गई, आने से उनके वातावरण पुर बहार है।
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: आने
1: सुन्दर।
0: से उनके वातावरण पुर बहार है। और अश्विनी ये शेर आपके लिए है कि रंगों का बादशाह बनाता है जो कृति।
1: क्या कहने, क्या कहने।
0: रंगों का बादशाह बनाता है जो कृति, सब लोग कह रहे हैं उसे शाहकार है।
1: हाय हाय क्या बात।
0: सब लोग कह रहे हैं उसे शाहकार है, और ये वक्ते शाम अपने घर की तरफ रवां। ये वक्ते शाम अपने घर की तरफ रवा, किस दर्जा दिल फरेब परिंदों की डार है।
1: क्या कहने, क्या
0: किस
1: कहने?
0: दर्जा दिल फरेब परिंदों की डार है, और आई है याद उनकी लिए दर्द बेपनाह। आई है याद उनकी लिए दर्द बेपनाह, हे मेहरबान आज ये दिल बेकरार है। हे मेहरबान आज ये दिल बेकरार है। और अपने गजल के दो मिसरे कहकर मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा कि हमने हर वक्त तुझको सोचा है, हमने हर वक्त तुझको सोचा है, तुझको पूजा है, तुझको चाहा है, और उसने दुनिया में क्या ना पाया है, उसने दुनिया में क्या ना पाया है, जिसके सर पर बड़ों का साया है। उसने दुनिया में क्या ना पाया है, जिसके सर पर बड़ों का साया है, और उसके चेहरे पे है अजब सी खुशी। उसके चेहरे पे है अजब सी खुशी, जिसको चाहा था उसको पाया है, जिसको चाहा था उसको पाया है। अब मैं एक बार पुनः कुसुम खुशबू जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना कोई कलाम, अपनी गजल कोई पेश करे। कुसुम खुशबू जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक गजल के चंद अशार

0: क्या क्या ख्वाब देखो,
1: वाह वाह क्या बात है,
0: दिखा जाता है क्या क्या ख्वाब देखो। और शेर बतौर खास
1: जी,
0: तुम्हारा जिक्र छेड़ा है किसी ने।
1: वाह क्या बात है,
0: शुक्रिया जी।

0: है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमेशा यद ही अब शादाब देखो। और ये शेर मेरे पूरे पंजाब के लिए,
0: जी
1: पंजाब
0: जी
1: की नज़र करती
0: जी
1: हूँ।
0: जी शायद
1: यहाँ खुशबू ही खुशबू।

0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: शुक्रिया कुसुम जी। अब मैं अश्विनी मानव जी से कहूँगा कि वो भी अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करें। अश्विनी मानव जी।
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे शीर्षक है मौसम।
1: जी।
2: कितने मौसम बदल गए, कितने मौसम बदल गए, अब मौसम ने ली अंगड़ाई है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: कितने मौसम बदल गए, अब मौसम ने ली अंगड़ाई है, कुछ राहत मिली है गर्मी से, गुलाबी सी ठंडक छाई है।
0: बहुत सुंदर, अच्छा बहुत सुंदर।
2: कुछ राहत मिली है गर्मी से, गुलाबी सी ठंडक छाई है, कभी गर्म रात तो कभी सर्द रात, कभी गर्म रात तो कभी सर्द रात, कभी रात को ठिठुरन सी आएगी, इन गर्म सर्द सी रातों में सर्दी दस्तक दे जाएगी।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: कभी गर्म रात तो कभी सर्द रात, कभी रात को ठिठुरन सी आएगी, इन गर्म सर्द सी रातों में सर्दी दस्तक दे जाएगी, सभी और हरियाली बिखरेगी, ओस में पत्ते रात नहाएंगे, ओस में पत्ते रात नहाएंगे, पौधे थे जो पहले मुरझाए, पौधे थे जो पहले मुरझाए, बड़े शान से सिर वह उठाएंगे, जब महक बखेरेगी सरसों, जब महक बखेरेगी सरसों, हवा भी शराब और हो जाएगी, जब महक बखेरेगी सरसों, हवा भी शराब और हो जाएगी, जब फूल खिलेंगे सरसों पर, खेतों में चादर पीली बिछ जाएगी।
0: बहुत सुंदर।
2: जब फूल खिलेंगे सरसों पर, खेतों में चादर पीली बिछ जाएगी, ओस की बूंदे नाचेंगी पत्तों पर,
0: क्या कहने,
2: ओस की बूंदे नाचेंगी पत्तों पर, हवा में भी ठहराव सा आएगा, जब सूर्य बखेरेगा किरने, हर रोम रोम खिल जाएगा, जब सूर्य बखेरेगा किरने, हर रोम रोम खिल जाएगा, प्रहरी की तरह भुट्टे के पौधे, प्रहरी की तरह भुट्टे के पौधे, भुट्टों को गले लगाएंगे, जब साग पकेगा किसी घर में, मक्की की रोटी संग ही खाएंगे, जब साग पकेगा किसी घर में, मक्की की रोटी संग ही खाएंगे, हमें गर्व है देश की धरती पर, हमें गर्व है देश की धरती पर, इतने मौसम यहाँ पर आते हैं, हमें गर्व है देश की धरती पर, इतने मौसम यहाँ पर आते हैं, हर मौसम का रंग अपना अपना, जो समय समय पर हमें दिखाते हैं, जो समय समय पर हमें दिखाते हैं। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर रचना मानव जी। और अब मैं डॉक्टर मनु मेहरबान जी से एक बार फिर निवेदन करती हूँ कि वे अपनी खूबसूरत रचनाओं से इस माहौल को और भी सुंदर बना दीजिए।
1: शुक्रिया कुसुम जी। एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ।
0: स्वागत है।
1: ताल्लुक हमारा सुहाना नहीं है, वो पहले सा अब दोस्ताना नहीं है।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: वो पहले सा अब दोस्ताना नहीं है, और चलो बाग की सैर का ले मजा हम, चलो बाग की सैर का ले मजा हम, ये मौसम तो कम आशिकाना नहीं है।
0: क्या कहने, बहुत।
1: ये मौसम तो कम आशिकाना नहीं है। और ये शेर देखिएगा अश्विनी जी, कि नहीं है नई नस्ल में अब अकीदत, नहीं है नई नस्ल में अब अकीदत, बुजुर्गों का घर में ठिकाना नहीं है, बुजुर्गों का घर में ठिकाना नहीं है, और मैं शायर नई नस्ल का हूँ रफीको, मैं शायर नई नस्ल का हूँ रफीको, मेरा रंग हरगिज पुराना नहीं है।
0: क्या बात है,
1: मेरा रंग हरगिज पुराना नहीं है, और चले

0: जाएंगे इस जमाने से एक दिन,
1: चले जाएंगे,
0: चले जाएंगे इस जमाने से एक दिन, हमारा यहाँ आबोदाना नहीं है, और चलो अब किसी और महफिल में बैठे।
1: क्या बात है, क्या मिसरा है।
0: चलो अब किसी और महफिल में बैठे, हमें दिल यहाँ पर लगाना नहीं है,
1: क्या
0: हमें दिल यहाँ पर लगाना नहीं है। और ये शेर देखिएगा कि कटे पेड़ ए मेहरबान जब से हरसू, कटे पेड़ ए मेहरबान जब से हरसू, परिंदों का कोई ठिकाना नहीं है, परिंदों का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे बीच में आज की इस काव्य गोष्ठी में पहुंचे, लुधियाना से पहुंची जसप्रीत कौर फलक जी, धारीवाल से आई कुसुम खुशबू जी, और पठानकोट से आए अश्विनी मानव जी का मैं डॉक्टर मनु मेहरबान बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हुण तुसी सुन रहे सी हिंदी कवि गोष्ठी, इस विच पाकलिया सी कुसुम खुशबू, अश्विनी कुमार, मनु मेहरबान, जसप्रीत कौर फलक होना ने। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेशी प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश।

आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से तुसी इस वेले सुन रहे जी तुहाड़ी फरमाइश प्रोग्राम प्रोग्राम च अगले गीत नूं सुनने लई साडे को फरमाइश पहुंची है जी। फरमाइश भेजन वाले ने तनोरी तेलीवाला तो निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया ते आयान बाबू शिवाजी चौंक कटनी तो फरमाइश भेजी है अनिल ताम्रकर अमर दिलीप वर्मा राजू रजक विपिन प्रकाश सोनी अरुण कनौजिया संजय सोनी पवन यादव सुनील जैन लालू सोना मोना हनी यश सोमिया ते इन्हां दे मम्मी पापा। गंजडुंड वाला तो फरमाइश भेजण वाले ने जी शमसूल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान फैजान खान अनु खान उस्मान अंसारी ते कलीम अंसारी। पिपीरिया तो कमलकांत गुप्ता श्रीमती दीपक गुप्ता ते शिप्रा गुप्ता। आहुन सुनते इन्हां सारे दी फरमाइश फिल्म कलयुग दा एक गीत।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश

0: को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।

0: थाईलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से भेंट की। डॉ. जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहामलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कानक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defence cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: Secretary West in External Affairs Ministry C.B. George addressed media in New Delhi this evening on agreements signed between the two countries. Our correspondent reported that the discussions between Prime Minister Modi and the Swiss President

करना है। साडा नंबर नोट करो जी 0181 43 141। और तुसी अपनी पसंद का गीत सुनने वास्ते सानू वट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। साडा नंबर है 94655 36 070। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं जी दलजीत दोसांझ, सुखबीर ते साथियों दे गाए हुए एक पंजाबी गीत नाल।

0: बहुत ही प्यारा गीत गैरी संधु की आवाज़ से सुनिया और उम्मीद करते हैं तुसी इंजॉय किया होगा। ये फरमाइश सानू राजू जी ने चंडीगढ़ तो की सी। प्रोग्राम जारी रखते हुए हम आप गलबात करांगे प्रोग्राम के अगले कॉलर के नाल। हैलो
1: हेलो अमित वीर जी, नाम?
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी, किस जगह तो बोल रहे हैं?
1: सुखबीर सिंह शाजली बोलदा ब्रेस गुरु।
0: बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल ने? अपने स्रोतियां पढ़ लिये जी। मजनू कटीला दिल्ली तो सानू मैसेज भेज रहे हैं। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुड़िया माही ते इशिता अरोड़ा। आदर्श नगर मलोट तो पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना, योगेश, निवान शर्मा ते नैंडी शर्मा, इन्हां सब का भी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। अनमोल चोगर जी हाजिर लवा रहे हैं पिंड मिर्जानपुर तो गुरदासपुर तो, और कहते हैं जी ये फरमाइश मेरे सत्कारयोग पिता श्री जुझार सिंह जी, माता जी हरजीत कौर जी और मेरी लाडली भैन महकप्रीत कौर जी के नाम है। वाह जी वाह, बहुत खुशी हुई अनमोल चोगर जी थोड़ा मैसेज पढ़ के। और तुसी फरमाइश की है कुलविंदर बिल्ला दे किसी भी पंजाबी गीत की, थोड़ा जहा होल्ड करो जी प्रोग्राम नाल, इस तरह बने रहो, असी तुहाडी पसंद दा गीत जरूर जरूर प्ले करांगे जी। तो पहला सुनते हैं आप फिरोज़ खान की आवाज़ों दे विच पंजाबी गीत जिहदी फरमाइश हुणे हुणे छाजली पिंड तो आई है। लो जी एक बार फिर तो दसना चाहांगे प्रोग्राम चल रहा सुगात ते तुसी भी हिस्सा बनो इस प्रोग्राम का। साडा नंबर नोट करो 0181 3142 171 और व्हाट्सएप के लिए 94655 36077।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी। सर
0: अजी कौन बोले नहीं किड़ जीगा तुम तो?
1: जी, मैं जनकराज जी गुरदासपुर तो।
0: जनकराज जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल थोड़े?
1: सर जी कृपा जी, अपने सुनाओ जी, अपने परिवार की सुनाओ।
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ते थोड़ा जि अपने बारे दसो, की काम कर करते हो?
1: सर जी मेरा हलवाई का जी, खाना वगैरह बनाई जी।
0: थोड़ा हलवाई का काम है? बहुत खुशी हुई तो ना गलबात करके जी। तुसी मिठाइयां बनाते हो, लोगों की जिंदगी च मिठास भर दे हो। जी जी जी ते साडा प्रोग्राम कोई खास चीज तुहानू पसंद होवे उहदे बारे दसो, कहड़ा प्रोग्राम लाइक करते हो, पसंद है तुहानू?
1: सारे प्रोग्राम पसंद है जी।
0: अच्छा, दिने भी सुनते हो प्रोग्राम? जी जी जी दिने भी सुनते हो, मौका मिलता सुनने का प्रोग्राम?
1: हाँ जी दिने जी, हाँ जी दिने जी।
0: चलो
1: मेरे
0: बहुत
1: नाल बंदे होंदे आ फिर बैठे होंदे नाल कम्म ते, मैं
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। हुण तो साढ़े सारे आकाशवाणी दे प्रोग्राम एप्लीकेशन ऐप ते भी अवेलेबल ने जी, है ना जी? ते आपां अगर नाल काम करते रहिए और फोन उपर स्पीकर ते रख दिए ते नाल काम चलता रहे, नाल मनोरंजन हो जाता। अज किहड़ा गीत सुनाओगे? ओ वाह जी वाह, बिल्कुल जी, बहुत वधिया संदेश है जी सरताज हुण इस गीत दा, जरूर सुनांगे जी। कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने चाहवांगे जी। प्रोग्राम चल रहा जी सौगात, आओ कुछ मैसेजेस पहला शामिल करते हैं प्रोग्राम दे विच। करमवीर हाउस पुछो कैंचिया बठिंडा तो सानू मैसेज भेज रहे ने जी। प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, दमन ते अभिजोत। अगला मैसेज सानू मिलिया जी भेजन वाले साडे साथी ने नरवेल महाराष्ट्र तो मैसेज भेज रहे ने पी एस नवहानकर, निर्मला नवहानकर, विशाल नवहानकर। महाराष्ट्र तो ही नारायण इंगले, सीपा तायड़े, आशीष महोयकर। और हमें किसी भी सदाबहार पंजाबी गीत में शामिल करें इस तरह लेके सानू भेज रहे ने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, रहन वाले ने आजाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड तो। ਨਸਬ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ।

0: इस गीती फरमाए सू सोमदा जिनी की सी उम्मीद करते हैं तुसी सब ने इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम नू अगे जारी रखते हुए हुण आपां गलबात करते हैं जी प्रोग्राम के अगले कॉलर के नाल। हैलो
1: हैलो नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने, किस जगह तो?
1: डेरा कलोनी फायर से परमा सागर बोल रहा सर।
0: परमा सागर जी बहुत बहुत थोड़ा स्वागत है, की हाल चाल है?
1: धन्यवाद सर जी, तुहाडा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं सर जी।
0: ते आज दिन किस तरह बीतिया ने, वधिया एवरेज के माड़ा? वधिया बीतिया,
1: आकाशवाणी जलंधर नाल होवे फिर।
0: वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खुशी हुई गलबात करके। आज सानू सारे नु केड़ा गीत सुनवाओगे? चलो कॉल करने लई बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुहाडी पसंद दा गीत तक पहुंच रहा जी। अगर तुसी भी प्रोग्राम दा हिस्सा बनना चाहते हो, गलबात करना चाहते हो, अपनी पसंद दा गीत सुनना चाहते हो, सानू कॉल करो 081-3-43-171। मैं तुहाडा आरजे दोस्त समित इस गीत तो बाद फिर हाजिर होना जी।

अगला खत सुन मिलिया जी बठिंडे तो पटेल नगर तो पिजन वाले ने सुभाष लेखराज देसराज राजकुमार ते अशोक कुमार ये सुनना चाहते ने जी हरभजन मान होना दी आवाज़ च कोई भी पंजाबी गीत लो जी इन्हां दी फरमाइश ते प्रोग्राम सुगात दी अगली पेशकश।

अगला खत सानू भेजने ने यदविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर मनजीत सिंह कोटली कलां तो। इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। यह सुनना चाहते हैं रणजीत बावा का गाया हुआ कोई भी पंजाबी गीत। तो लाओ जी प्रोग्राम की अगली पेशकश रणजीत बावा की आवाज़ में।

0: व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं सूबेदार संधू सिंह पट्टी बसौली वाले, आर्नव पट्टी, शकीला पट्टी, कुलवंत, तीनू ते बहुत सारे साथी यह सुनना चाहते हैं कुलदीप मानक ते युद्धवीर का कोई भी युगल गीत।
1: गीत है अपने बगानियां दा।
0: लो जी ने पसंद सुनते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश, युद्धवीर मानक ते कुलदीप मानक उन्होंने गाया एक पंजाबी युगल गीत।

0: ओदे उत्ते जदो हड़ वांग सजना बिलीड़िया च बदो बदी डुल रहे गबरू ही जान दे ने कोई मुट्ठ यार जदो पींगी उतले दिए फुलारे वे कुंड विच।
1: इस गीत की फरमाइश सानू भूषण कटारिया जी ने की सी। पूरा पूरा नाम मानो जी प्रोग्राम सुगात।

0: इस गीत में ही अपने आज दोस्त अमित नू प्रोग्राम सुगात इत्थे खत्म करन दी इजाजत दिओ, पर तुसीं साडे नाल इस तरह बने रहो क्योंकि साडे बाकी दे प्रोग्राम जारी रहणगे। बहुत जल्दी दोबारा मिलांगे, इस वादे नाल इजाजत दिओ जी, धन्नवाद।
1: ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਆ।

प्रोग्राम पंजाबी मेलेडी गीत विच सब तो पहला सुन दिया मीका सिंह ते साथियों दा गाया हुआ पंजाबी गीत। इस तो बाद आपां सुनांगे सुरिंदर कौर ते डॉली गुलेरिया दियां बोलियां। होर भी बहुत प्यारे प्यारे गीत तुहाडी मनपसंद गीत सुपरहिट गीत सुनावांगे। बस बने रहो सड़न लिस्ट तरह ही तुसीं इंजॉय कर रहे हो पंजाबी मेलेडीज़ गीत।

वडे किया वड्याईया, किछ कहना कहन न जाई, सो करता कादर करीम, दे जिया रिजक संभाहे। कथन अनुसार प्रभु सिरजनहार दे गुण बयान नहीं कीते जा सकते, ते संसारी जीवां दे अवगुणां दा कोई अंत नहीं है। समझ ही नहीं आउंदी कि इस बेअंत संसार रचना अंदर जीवां दी मां अते प्यो कौन ने ते कित्थों आए। माता दी उदर अग्नि अते पिता दे बिंब विचों उपजिया जीव किस मकसद लई रचया गया, इस सारी रचना दे रचायता दी अजीब ही सोच है अते मौज है। इस मनुखी जामे तो पहला रुखां बिरखां पशुओं दियां जोनियां भी उसे दी उपज है, कदे सप्पां कदे पंखियां दी जून। कुकर्म करन वाले जीव तंदियां विच गलतान ने, इना सबना नू आप प्रभु ही देख रहा है, उस तो कोई ओला नहीं। तीर्थां दे कंडे खंड ब्रह्मांड ए सब कुछ दृष्टमान है। जेकर व्यापारी दी न्याई लेखा जोखा कीता जाए तां इस वणज दा वणजारा दिल विच ही महसूस कर रहा है। गल की जिन्ना सागर विच नीर है उतने ही औगणा नाल भरिया होया साडा मन है। हे प्रभु, आप ही दया करके कृपा करो ते इस डुबदे हुए पत्थर नू तारो। मेरा हिरदा विकारां दी अग्नि नाल तप रहा है ते मेरे अंदर तृष्णा रूपी फट पौण वाली कटार चल रही है। पर नम्रता सहित बेनती है कि जिड़ा मनुख रब्बी रजा नू पछाण लैंदा है उस दे अंदर हर वक्त आत्मिक आनंद बनिया रहिंदा है। राग गौड़ी चेती विच बाबा नानक जी का फरमान है, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। सरवण करदे हां भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया इश।

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द का गायन किया सी भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु की उस्तत करन लई जीव की बुद्धि तुच्छ प्रतीत हुंदी है, उस तों तां बलिहारे ही जाया जा सकता है। सोरठ राग विच उचारित शब्द विच पंचम गुरदेव फरमान करदे ने कि मैनू वड्डे भागां नाल पूरा सच्चा गुरु मिल गया है ते मेरा मन रोशन हो गया है। उस वर्गा होर कोई नहीं है, इस करके मैनू तां उसे ते ही भरोसा है। मैं अपने सच्चे गुरु तों वारने हाँ, जिस दे मिलाप सदका मैनू लोक परलोक दे सुख अते आत्मिक आनंद दी प्राप्ति हुई है। करण करावन हार स्वामी घट घट की जानन वाला है, प्रभु ही मेरा साई है। उसकी चरण शरण प्राप्त करके निरपयता प्राप्त हो गई है ते उसका नाम ही जीवन का आधार है। काल दे प्रभाव तो मुक्त प्रभु दे दर्शन ही सकारथ हन। जो प्रभु अज भी है, पहला भी सी ते भविख विच भी होएगा, उही अपनी प्रीत दे रंगा विच रंग के अपने प्यारे जना नू गल नाल लाई रखदा है। उस वड्डे प्रभु दियां वड्याईयां भी अणगिणत हन अते शोभा भी हैरान कर देण वाली है। उसे ने ही मेरे सारे कारज रास कर दित्ते हन। ऐसे पूरन गुरु दा मिलाप मैनू प्राप्त हो गया है। इस प्रीत मिलनी सदका मेरे सारे दुख बिनस गए हन। अपने सतगुर कै बलिहारै आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारै। सरवण करदिआं इस शब्द दा कीर्तन भाई हरजिंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे पासों।

0: आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरजिंदर सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: ए पावन शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया होया राग सोरठ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 609 उपर सुवायमान है। इस पवित्र शब्द दी विचार इस प्रकार है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज असां संसारी जीवां नूं समझाउंदे हन कि मैनूं वड्डी किस्मत नाल कामल भाव पूरा गुरु मिल गया है। सतगुरु जी दे मिलाप दी बरकत नाल मेरे मन विच आत्मक जीवन जीवन दी सोझी पैदा हो गई है। मैनू हुण अपने मालक प्रभु जी दा सहारा मिल गया है। जिस सब दे मालक प्रभु जी दी कोई भी जीव बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रथाए शब्द दे आरंभ दे बचन सतगुरु अलाउंदे हन। गुरपूरा भेटियो वडभागी मने भया परगासा कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। कल सहार पठ धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी की उस्तत करदे हां बचन करदे हन कि धन गुरु अंगद देव जी जिस मनुख उत्ते अपनी कृपा दृष्टि करदे हन उसनू आत्मक जीवन जीवन का सलीका बख्शदे हन। उस दे सारे पाप ते पापां दी सारी मैल दूर कर देंदे हन अते काम क्रोध लोभ मोह हंकार ए सारे उस दे काबू विच कर देंदे हन। गुरु अंगद देव जी दे मन विच सदा आत्मक सुख वस रहा है जिस दे कारण गुरु संसार दा दुख दूर करदा है। गुरु नौ निधियां दा दरियाओ है। गुरु असां संसारी जीव

मू लालन सिंप्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी। इस शब्द गायन की तसी आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

सतनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मचाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म गाए पार कोलू चरखा चक्की चक थाल बरोले बहुत अनंत लाटू मधानियां न गा पंखी पहुदियां ले नसा सुवे चार भय जंत नानक पहुदियां गणपत नयंत।

0: काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सुख करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा हरा भावे का
1: एक होंदा खाए चले था उतना भी काई कार जल थल जिया पुरिया लोहा आकारा आकार हो जाके से तुहे जाने तिना भी तेरी सार नानक भगता भुख सलाहन सच नाम आधार सदानंद रहे दिन राती गुणवंतिया पासार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार कड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे ग्यार नानक जिन करते कान किया सो जाने करता

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खार, पड़िए जेते बरस बरस, पड़िए जेते मास, पड़िए जेती यार जा, पड़िए जेते सास। नानक लेखा एक गल और हूं मैं चखना चाख महला पहला।
1: लिख लिख पढ़या तेता कड़या, बहुत तीर्थ पवया ते तो लव्या, बहु पेकिया देही दुख दिया, सोहवे जी अपना किया। आना खाया साथ गवाया, बहुत पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे अंस कहरे, मोन विगुता क्यों जाके गुरबिन सुता। पागो पिताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्खंदे पत गुआई, विड़ना में किस थाई न पाई, रहे बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पिस्तानी, सतगुरु भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस अंधे से ते किंते नहीं केवल, हों में शब्द जलाए।

श्लोक महला पहला। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़।

धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक न जाने छठ बाहे कर बार सबको पूरा पे होवे घट न कोई आख है पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तो लिया जा।

रोक मांगद कर तूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गात पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी समत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त गुर अमरदास निज भगत है दे

0: चित चितवो अरदास कहो पर कह पी ना सको, सर्ब चिंत तुझ पास सात संगत हो तको, तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा, जब गुर देखे सब जिस्ट नाम करता मुख मेवा, अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो, गुर अमरदास कारण करण जिव तू रखे तिव रहो, पहर समाध सुनह ज्ञान है आसन चढ़ो, धर्म तनख कर गयो भगत सीला सर लड़ो, पै निरपोहर टल मन शब्द गुर ने जा गड़ो, काम क्रोध लोभ मोहपत पंच दूत बिखंडो, भलो पुहार ते जो तना निरपत नाथ नानक बर, गुर अमरदास सच सल पन तै दल जितो एव युद्ध कर, घन हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै, रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै कबजन पल उन्हें जो गावै, पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनयावै।
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे, शरण परे ते उबरे छोड़ जंपुर की लिखे, भगत पाए भरपूर हृदय उचरे करतार, गुरु गो दरियाओ पलक डुबंते तारे, नानक कुल निमल उतरियो गुण करतार उचरे, गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर पर, पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै, सच सच जानिए एक चित है लिव लावै, काम क्रोध वस करै पवन उड़ंत ना तावै, निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ विचार पावै, कल मैं रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो, गुर मिलियो सो पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो, रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसिए मुखो है पंडित मिठे, बरस एको फिरियो किन परचो लायो, कहत्या कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुणों क्या कहो, गुरु ने मिलायो पिखिया जीव तू रखे तिव रहो, जीव तू रखे तिव रहो।
0: अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लो

दुख संसार खोवे, गुर नवनिध दरी आओ जन्म हम कालख तोवे, सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

0: सतगुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो।
1: किया खेल बड मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइए परमारथ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोए न जाने। शिव बिरंच धर ध्यान, नितय जिस भेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जन जग कियो, जन मथुरा रस नारस। श्री सत नाम करता पुरख, गुर रामदास चित्त है बस।
2: सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन, शिव सन काज समुद्रिया। चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते, अमरीक पवजल तरिया। उदो अक्रूर तिलोचन नामा, कल कबीर किल विख हरिया। सोई नाम अशल भगते पवतारन, अमरदास गुर को फुरिया। तित नाम राग तीस ते आवै, जति तपीसर मन वसिया। सोई नाम सिमर गंगे पिता मैं, चरण चित

0: उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहजो सुपाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख होए सिफत खसम नूर अरसह गुरसा तुध डिठे सच्चे पात सहा मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साहु सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सब नांदावे सजन सचा पात साहु सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा घर पहला ते तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद किसह जाची किस आराधी जा सब को कीता होसे जो जो दिसे वड़ा बड़ेरा सो सो खाको रल से मेरे पांग रंकार पाव खंडन साव सुख नाव निद देश किस जाची किस आराधी जा

निरपांग्रंकार पाव खंडनाम साव सुख नाव निदेशी हार जियो तेरी दाते राजा मानस बपड़ा क्या सलाहे क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हार त्याया सब कुछ तिसका तिसके पू

आनंद भया सुख सहज समाने सत गुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध आनंदन नाम बखानी उपदेश सुन साध संतन का सर चुकी कान जमानी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्ब जिया दयाल सब किस कीता तेरा वरत क्या हम बाल गोपाल राख ले नानक जन तुमरा जो पिता पूत किरपाल कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्ब जिया दयाल सब किस कीता तेरा वरत क्या हम बाल गोपाल राख ले नानक जान तुमरा जो पिता पूत किरपाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा कर पहला ते तुके एक ओंकार सतगुरु प्रसाद किस हां जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिसा वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरपाव निरंकार भव खंडन सब सुख नव